नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा

0: पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज का परिश्रम कल का परिणाम तय करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271। छह 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुग्दल। सुनिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। 7 भूले बिसरे गीत हमें राही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। आठ पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 10:00 आप सुनेंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे।

अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। ग्यारह बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे सुनिए सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी सुनिए, आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे आप सुनेंगे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में आज के मेहमान लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे राग अनुराग, 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चुपके चुपके, लेखन है आर के शर्मा का और निर्देशन है नीलम चोपड़ा का, 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। रात 9 बजे सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, 10 बजे छाया गीत, आलेख और स्वर है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतुचक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्जवल शिला पर बैठे हुए श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृह

गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: हमने शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ गौड़ मल्हार, मियाँ की मल्हार, जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित राग हैं, की आपने चर्चा की और बंदिशें भी सुनाई।
1: जी
0: लेकिन शुभा जी, मुझे एक सवाल हमेशा मन में ये उमड़ता घुमड़ता रहता है कि ऐसी जो बंदिशें हैं वो क्या सिर्फ मल्हार ही में मिलती हैं, किसी और राग में?
1: जी, बहुत सारी हैं ऐसे अन्य रागों में जिनका वर्षा से ऐसा कोई संबंध नहीं है रागों का, लेकिन जो बंदिशों की जो का जो साहित्य है वो वर्षा से संबंधित जरूर मिलता है।
0: जी
1: एक ऐसी बंदिश है जिसे संगीत के बहुत सारे विद्यार्थी उससे परिचित होंगे, राग बिहाग की एक बंदिश है, लट उरझी सुलझा जा रे बालम। ये बहुत सारे लोग सीखते हैं, और क्योंकि बिहाग ऐसा राग है, एक महाराग है, जिसे शुरुआत में भी सिखाया जाता है, यानी जो सीखना शुरू करता है वो उसके पहले दूसरे साल में आपको बिहाग जरूर सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बंदिश से परिचित होंगे।
0: जी
1: मुझे जो एक बात इसमें अलग लगी कि ख्याल के रूप में तो इसे गाया ही जाता है, ख्याल गायक इसे गाते ही हैं, लेकिन मुझे यही साहित्य और यही पद, यानी जो साहित्य है, वो मुझे वैष्णव मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में, जो उत्तर भारत के कृष्ण मंदिर हैं, उनमें आप जानते हैं कि संगीत के बिना सेवा ठाकुर की पूरी
0: होती
1: नहीं
0: ही नहीं
1: होती।
0: है,
1: राग सेवा
0: ये
1: अवश्य।
0: सनातन परंपरा है।
1: जी बिल्कुल
0: अष्टछाप कवियों ने
1: जी
0: इसका जी
1: जी और ऐसा साहित्य और ऐसा संगीत मिलता है उसमें जो कि बिल्कुल खजाना सा है। तो उसमें यही साहित्य मुझे मिला, लेकिन उसे तीज के पदों के एक संग्रह में शामिल किया गया था।
0: जी जी
1: तो हम तो जब ख्याल गाते हैं तो एक स्थाई एक अंतरा गाते हैं, लेकिन उस पद में जैसे तीज का पद कहा गया, और वो ठीक भी लगता है क्योंकि तीज का जो त्योहार है वो वर्षा ऋतु के ही दौरान आता है। और मुझे याद है कि अभी जो एक तीज के समय मेहंदी लगाई जाती है, कन्याएं सुहागिनें
0: जी
1: सब जो है सज धज के और मेहंदी लगाती
0: हरी
1: हैं,
0: चूड़ियां
1: हरी
0: पहनती
1: चूड़ियां,
0: हैं।
1: लाल चूड़ियां, मणिहारन बुलाई जाती है चूड़ियां पहनाने के लिए घर की महिलाओं को, और माँ की ओर से साड़ी, श्रृंगार का सामान, ये सब आता है। तो झूला पड़ता है, झूला भी झूला जाता है तीज
0: जी
1: के दौरान। तो ये बिल्कुल, इसका जो साहित्य है वो बिल्कुल उपयुक्त लगता है कि तीज का पद क्यों कहा जाए इसे।
0: शुभा जी, भारतवर्ष में जगह जगह सावन ऋतु, सावन और जो आप ये कह रही हैं त्योहार, थोड़ा सा फर्क होगा इसको
1: बिल्कुल
0: मनाने की जो पद्धति रीति है उसमें फर्क होगा, लेकिन मनाया तो जाता ही है।
1: जी हाँ, किसी ना किसी रूप में धरती का जो एक की जो उपजाऊ एक उसका एक जी
0: सृजनशीलता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: उसको नवाजा जाता है, उसको नमन किया जाता है, और प्रार्थना होती है कि ये सदैव ऐसा ही बना रहे।
0: जी
1: तो इस पद में क्या कहा गया, जो नायिका है वो तो हाथ में मेहंदी लगा के बैठी है, दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, तो अब संकेत कैसे करे वो नायक को, कैसे उसे अपने पास बुलाए। तो वो कहती है, लट उरझी सुरझाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। वो तो बेबस है, वो तो मजबूर है, अपने दोनों हाथ तो वो लगा ही नहीं सकती है अपने केश पे। तो लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। फिर जो तीन अंतरे हैं वो इस प्रकार हैं, सिर की साड़ी सरक गई है, जो साड़ी का जो घूंघट है जो सर पे लिया था वो सरक गया है, अपने हाथ उढ़ाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है।
0: वाह,
1: फिर दूसरा अंतरा उसके बोल इस प्रकार हैं, भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, शायद हाथ लगा हो तो बिंदी भी गिर गई हो,
0: हाँ,
1: भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, हा हा करत लगाए जा बालम।
0: हा हा
1: हाँ, मतलब एक बुलाने का तरीका है,
0: करत
1: नीलांबर प्रभु गुण ना भूलूं,
0: हाँ
1: बीरी नैक खवाए जा बालम। बीरी यानी पान का बीड़ा, वो भी मुझे अपने हाथ से खिला दो, ऐसा निवेदन है।
0: जी
1: तो ये पद, तीज का पद, जो कि यदि हम उसे बिहाग में बैठा के आलाप
0: जी
1: इत्यादि के साथ, बढ़त के साथ गाएं, तो वो ख्याल गायक भी गाते हैं, और मंदिरों में ये तीज के पद के रूप
0: जी
1: में भी सुनने को मिलता है।
0: और भले ही इसमें जैसे उमड़ घुमड़ कर आई घटा और ये सब ना भी हो, फिर भी वर्षा ऋतु के समय, वर्षा काल में इसे मनाया जाता है
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: त्योहार।
1: बिल्कुल मनाया जाता
0: तो
1: है।
0: उस समय तो नायिका के हाथों में जब मेहंदी लगी है, और हर जगह हर प्रांत में ये होता है कि सावन में हाथों में मेहंदी तो लगाई जाती है, तो सुनाएंगी आप ये पूरा पद या
1: बिल्कुल
0: क्या मन
1: बिल्कुल
0: है?

0: पुरापद भी सुनाऊंगी और ये भी कहूंगी कि हर रचना का जो साहित्य है उसे यूं ही उड़ा नहीं देना चाहिए, उसमें बहुत सारी कहानियां पिरोई हुई आपको मिलेंगी।
1: और हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर सी बनी हुई है, ये
0: जी
1: चीजें बंदिशें, तो इनको सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत ही उपयुक्त
0: जी
1: होगा।
0: राग बिहाग का चलन कुछ इस प्रकार है।

0: ये था तीज का पद, तीन अंतरे बड़े ही सुंदर राग बिहाग में। शुभा जी, आज हम यहीं रुकते हैं, श्रोता मित्रों से भी आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पतिता फिल्म से आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में ये गाना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आवाज में आप सुन रहे थे अफसाना फिल्म से ये गाना, असद भोपाली के बोल और संगीत हुस्नलाल भगतराम का। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं दिलेना दान फिल्म से, सुधा मल्होत्रा की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे आवारा फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

नमस्कार, हमें राही प्यार के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रामपुर का लक्ष्मण, इस फिल्म के गाने के साथ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अपराध फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दो चोर फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम का के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

0: जीत फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए

0: बात है कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म से गाना। असद भोपाली के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: हाँ, मेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवी वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविक

0: नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई

0: प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवीं वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो

0: मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल न बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

0: घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।
1: भूल

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो ये है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत धेनु चलैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक पहेली के साथ। यहाँ वहाँ हर जगह जो आपका पीछा करती है, दूर रहती है फिर भी साथ में है, हर परेशानी के सामने खड़ी हो जाती है, आखिर है किसकी ये परछाई जो आपका पीछा करती है। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुदक्षिणा के साथ।

रौनित सरकार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत फिल्म हेलीकॉप्टर इला।

और हम इस फिल्म से आप सुन रहे थे अदनान सामी और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाना मुन्ना धीमान के बोल और विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे दिलवाले फिल्म से गाना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं वीआर फैमिली फिल्म से, अनुष्का मनचंदा, आकृति कक्कड़ और सूरज जगन की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक रोमांटिक लड़की का रोल हो या यू मी और हम में मैच्योर लव का कैरेक्टर, काजोल बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेसेस में से एक है। 90s में इनका सितारा खूब जगमगाया और अब उनके कमबैक से बॉलीवुड के सारे फैंस बहुत खुश हैं। इनकी रिसेंटली कुछ फिल्म्स का नाम लें तो तानाजी, हेलीकॉप्टर, ईला, माँ जैसी फिल्म्स ने आजकल ही नज़र आ रही हैं। काजोल के बारे में जानिए कुछ और बातें 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में।
1: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहाँ तक कि।
2: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
1: डरता हूँ कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और तुम्हारा चोट खाने की हिम्मत।
2: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

सिनेमा के आइकॉनिक कपल से रियल लाइफ कपल आप सुन रहे थे अजय देवगन और काजोल की आवाज। आइए सुनते हैं राजू चाचा फिल्म से

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे राजू चाचा फिल्म से ये गाना, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था।

0: कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। राशिद अली की आवाज में जाने तू या जाने ना फिल्म से ये गाना अब्बास टायर वाला के बोल ए आर रहमान का

आप सुन रहे थे ये गाना जाने तू या जाने ना फिल्म से। वैसे ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसके फैंस तो बहुत सारे बने थे, लेकिन इस फिल्म से ज़्यादा फैंस बने इसकी एक्ट्रेस यानी जेनेलिया डिसूज़ा के। आज विविध भारती पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जेनेलिया डिसूज़ा का बर्थडे। फोर्स फिल्म से आप सुन रहे हैं गाना के और सुचित्रा की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, हैरिस जयराज का संगीत।

भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना। वो नील अंग सा रूप रंग लंग, सघन समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन में दंग और

अतरंगी फिल्म से, अतरंगी रे फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल, सूर्यांश, स्वागत राठौड़ और सार्थक कल्याणी की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अभय जोधपुरकर की आवाज में जीरो फिल्म से गाना इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से। पैपॉन की आवाज में गालिब और संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा, फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों की गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्य किताबें पढ़ती थी और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थी। एक

और वे कॉलेज से पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम, हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यूमी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यूमी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

0: आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला।
1: काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा, सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म माय नेम इज़ खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

देवगन बने थे तानाजी मालुसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल्लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपनी फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए, जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: घर के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: घर के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सेल्यू लाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: माय तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थी तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आई, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड दिखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड दिखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाओ,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी,
2: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
1: जी,
2: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ।
1: वाह वाह वाह,
2: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
1: जी जी,
2: हम लोग मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, कीनिया में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया।
1: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात ये है कि

0: ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं। जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहाँ से मुझे हर चीज़ जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज़ अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब
0: बिल्कुल
1: चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री
0: बिल्कुल
1: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
0: वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ इंडियन
1: बिल्कुल,
0: क्लासिक
1: कि
0: म्यूजिक, वो युवाओं के
1: एजुकेशन,
0: बीच।
1: हाँ
0: हाँ
1: एजुकेशन जो है आप उनको कॉनोसियर्स बनाए, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए,
0: जी
1: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
0: क्या बात है।
1: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो
0: कल्चरल
1: विंटर्स,
0: हब।
1: बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब,
0: त्रिवेणी
1: त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है,
0: बिल्कुल
1: ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा। हाँ,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया, कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डे सिका से लेकर ब्रेसॉन, सब एलन डेलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा मतलब आंद्रे वायदा, किशलोव्स्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बम्बई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
0: क्या बात
1: करूं।
0: है। बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने देखा है
1: हाँ
0: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था? घर में भी कोई गाता था?
1: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉरपोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉरपोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि रे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है, और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा चला गया। सुनते हैं।
0: क्या बात है, ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और जयदेव की तर्ज थी। सुनते हैं ये गाना। जी।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे

0: बहुत कमाल की चीज कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना।
1: मजेदार है ये।
0: हाँ, बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है, तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज टू यू नो सी दैट, और
1: ये
0: उस
1: डीप
0: समय
1: बात है, बिल्कुल।
0: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आपका क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहाँ उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं कि जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
0: बिल्कुल। तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
1: वाह वाह वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में,
1: जरूर।
0: हाँ,

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी
0: बिल्कुल,
1: ख्वाहिश है।
0: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: गाने में। और
1: एज अ
0: स्कूल में
1: सिंगर।
0: जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे
1: वाह
0: कहा था,
1: वाह
0: मेरे इतने
1: वाह,
0: छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा। और
0: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं
1: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
0: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे, और
1: जी
0: दुर्गा पूजा
1: वाह वाह, ये तो
0: हमारे
1: बहुत महत्व।
0: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
1: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
0: 10 साल।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: इतना सारा याद
0: म्यूजिक उससे
1: करना।
0: पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
1: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
0: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी
1: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही
0: जी तो
1: थी
0: ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी। क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉरपोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
1: वाह,
0: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग
1: विजन।
0: दिमाग खराब हो
1: अच्छी खासी लड़की
0: गया
1: जो एकेडमिक्स में
0: अच्छी
1: जा
0: खासी
1: रही
0: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई
1: थी क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
0: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया। मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है,
1: अच्छा
0: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
1: वाह वाह, जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शंस
0: तो
1: थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा
0: उनको मतलब हार्ट अटैक आया और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब
1: तब तक तो
0: तक
1: काम पूरा।
0: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे
1: पैसे तो वहां ऑलरेडी आ रहे
0: तो वो
1: थे
0: फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई कहती एक बिगड़ गई है दूसरे को नहीं बिगड़ने
1: तो वो
0: देंगे
1: सीधी राह पे चली गई।
0: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेतरम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और
1: गुरु है।
0: कलाक्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और मतलब लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने
1: तुम्हारी
0: दीदी
1: वजह से
0: दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला।

0: जूडी डेंच, एन हाथवे, इन सब के साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए। वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी MBA किया जाए,
1: मजा आ रहा है
0: क्योंकि
1: मुझे ये सुन
0: पापा, हाँ पापा ने
1: के।
0: ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली, तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए। कहते नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
1: आप यहां पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था। सो आई वॉज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे MBA करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग, दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज वॉट हैपन्स टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स। तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई। अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं, बट
1: उस फिल्म का
0: अगेन
1: नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है। और
1: लेकिन ये
0: ये
1: बन गई।
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो। और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
1: ओहो, वाह
0: हाँ,
1: वाह।
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे क्या काम
0: हाँ,
1: करता है।
0: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में। मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स द एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल की टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह, क्या प्यारी बात
0: तो
1: कही आपने।
0: मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ, और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हौर ता हबे,
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
1: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते
0: जा
1: हैं।
0: हौर ता हबे।
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहां एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है
0: हाँ जी,
1: तो एक सजेशन करता
0: आप
1: हूं।
0: हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
1: हाँ, कि
0: अलाउद्दीन खान साहब का,
1: वो बजा सकते हैं माता
0: या
1: सरस्वती शारदा, जिसका
0: बिल्कुल
1: कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से
0: सब,
1: है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है
0: बिल्कुल
1: और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
0: बिल्कुल
1: ये सुनते हैं। ये
0: हाँ
1: समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब
0: सब,
1: को, मैहर घराने के संस्थापक,
0: या
1: और पंडित रविशंकर जी
0: शंकर
1: को।
0: जी को। हाँ
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: तले चूसको।
1: उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे,
0: वाह वाह,
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई, और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
0: बिल्कुल।
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है, शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं, जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस, और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट देन लाइक आई सेड कि आई थिंक नो पेन नो गेन।
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी
0: इससे पहले बना चुकी
1: इससे
0: थी
1: पहले,
0: आप? जी,
1: हाँ, और
0: नवाज थे उसमें।
1: नवाज नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है, तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे एज को एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में, उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे, नवाज और मैंने एज को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ
0: एनएसडी में।
1: ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट,
0: क्या हुआ था आपके साथ
1: फिर
0: रोम में?
1: मतलब
0: वेनिस
1: सुपरनैचुरल
0: में
1: स्टोरी थी।
0: सुपरनैचुरल।
1: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस, खैर देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी, मैंने
0: राइट।
1: सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। उसी ने मुझ में ये कीड़ा
0: डाल दिया।
1: इंसर्ट किया।
0: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
1: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
0: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
1: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ईरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद ईरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, उसके बाद पैंडेमिक आ गई तो सब कुछ बंद हो गया। लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर, मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम,
0: अभी
1: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए अनपॉज करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट वो डायरेक्ट किया मैंने, और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया, वहां मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला, फिर
0: वाह
1: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला, केरला मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला इसमें हमने स्क्रीनिंग की, अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
0: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
1: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
0: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया,
1: हाँ,
0: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
1: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी।

0: पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था, मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहां फुल्ली आ गया है।
1: और कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको, और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों।

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा,
1: हाँ जी।

0: अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी
0: है।
1: जी जी और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया। और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते
0: वाह वाह
1: थे गाना, क्योंकि
0: वाह।
1: हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी,
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे। इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6 साढ़े 6 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर,
0: आहा
1: और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6 साढ़े 6 7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी और उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी, और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
0: ऑडिशन से मिली थी।
1: ऑडिशन से। बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो
1: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के
0: हो,
1: लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: लेंगे। और मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ये ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया
0: क्या बात
1: कि,
0: है।
1: और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: আমি লাস্যময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই, তবু আখি

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: बहादुर शाह जफर का कलाम अभी आपने सुना। गायिका थी रूना लैला और संगीत पंडित गुलाम कादिर का था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और उनकी हमनवा की गाई ये कव्वाली। इसे तविश महमूद ने लिखा और धुन बनाई निसार ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक गजल, शायर सबा अफगानी और संगीत इकबाल का।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: शोभा गुरटू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और खव्वाल की आवाजों में हजरत अमीर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफी कव्वाली थी जो हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शिद यानी अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में भी अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
0: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
0: जी
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
0: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
0: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
0: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
0: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए, कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
0: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या, विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
0: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी वो तो है,
0: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
0: जी,
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
0: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है। विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
0: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे। पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
0: देखते देखते एक घंटा क्या, कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
0: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
0: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
1: क्या बोलेगा,
0: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
0: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे।
0: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं, इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
0: जी,
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
0: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए और याद रखिए।

0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज,
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आँखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
6: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
7: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, इसे पास देना चाहिए।
8: लगता है खुद ही बोल करके मानेगा, अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
9: आज खेल में बड़ा मजा,
10: बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
11: हाँ, गोल हो गया किसी का,
2: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
12: कहां फंस गई?
13: ए, इधर क्या देख रहे हो?
5: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
12: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
13: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
14: चलो चलो चलो भाई,
5: निकलो। लेकिन
12: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
2: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
15: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
12: हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं।
15: हाँ
2: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
5: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
15: जी बाबा।
5: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
15: तो क्या इनाम देते हो?
5: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।

0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे, पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
1: भाई पूरा एक महीना हो गया है, आज फैसला।
2: तुम्हें क्या लगता है महाराज आ जाएंगे?
1: अरे अरे
2: सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
3: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
4: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत बहुत बहुत।
3: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
1: सही बात है।
3: उसका संकल्प दृढ़ है, वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
1: बिल्कुल सही कहा,
3: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
0: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
1: उनका अच्छा इंसान हमेशा सही काम करेगा।
0: भले बिल्कुल। और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
4: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
7: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
8: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा।

0: शिकार से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
1: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
0: हेलो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
1: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी, वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
0: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है, वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
1: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ, हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।

0: कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई, चूहे भाई,
2: क्या
1: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है।
2: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
1: चूहे भाई, वो देखो, वो सामने, वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
2: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
1: हाँ हाँ, चलो
2: चलो चलो कौवे
1: चलो,
2: भाई
1: चलो,
2: चलो,
1: चलो, चलो,
2: चलो, चलो।
0: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
3: चूहे भाई, चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
2: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
3: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
0: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया। सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया। कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम

अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। अगला गीत जतिन ललित की संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा हुआ, युगल स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है फना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
1: जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं आशा भोसले और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीतकार समीर हैं और संगीतकार जतिन ललित हैं।
2: अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोसले और उदित नारायण को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना। आवाज रूना की, संगीत दिया है AR रहमान ने और गीत लिखा है अब्बास ने।

0: से ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: बहती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज भीख लेते हैं सावन में। कैसे हैं आप लोग बताइए पहले। अरे भाई क्या बात है, सब सावन का आनंद ले रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम उसी सावन के नाम हम करते हैं जिसका हम आनंद ले रहे हैं, या हमारे कुछ श्रोता लोग जिनके शहर में बरसात नहीं है वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई सावन के इस महीने में हमारे श्रोता कैसे हैं, जरा बताएंगे। आप सभी जानते हैं ना कि सावन आते ही जैसे हवा का मिजाज बदल जाता है, यानी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों की हरियाली, रिमझिम बारिश की बूंदें और ठंडी ठंडी हवाएं मन को सुकून से भर देती हैं। और हम सभी कहते हैं कि भाई ये जो मौसम है खास तौर से सिर्फ प्रकृति को ही नहीं हमारे दिलों को भी हरा भरा कर देता है, है ना? आप भी महसूस करते हैं ना ये सब? तो चलिए आज सुरीला सफर में हम सावन की बूंदों का एहसास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बताइएगा इस सुरीला सफर में आज हमारे साथ चलने के लिए आप लोग तैयार हैं भी कि नहीं। भाई देखिए, सावन का महीना है, बरसात का मौसम है, हो सकता है कहीं कहीं हमें गर्मी का ऐसा महसूस हो, गर्मी महसूस हो, तो हमें परेशान नहीं होना है। सब मिलकर इस हरियाली का, इस सावन का, इस उल्लास का, इस प्रेम का, इस मिलन का, इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, ठीक है? तो आज की इबारत आप सभी ने पढ़ ली है, जो फेसबुक श्रोता हैं हमारे, फेसबुक से जुड़े हैं उन्होंने पढ़ ली है, लेकिन जो फेसबुक फ्रेंड नहीं है हमारे उनको हम बता दें आज हमने आपके लिए इबारत रची है ये लिखकर कि आदरणीय श्रोताओं, संगीत प्रेमियों और सम्मानित हमारे नए श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। भारत की ऋतुओं में यदि किसी ऋतु का सबसे अधिक इंतजार किया जाता है तो वो है सावन। हाँ, और ये केवल वर्षा का मौसम नहीं बल्कि हरियाली का, उल्लास का, प्रेम का, मिलन का, विरह का और प्रकृति की आराधना का, शिव की आराधना का उत्सव माना जाता है। जब धरती पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो मानो प्रकृति स्वयं गीत गाने लगती है। झूले पड़ते हैं, पपीहा पुकारता है, मोर नाच उठते हैं और मन, हमारा मन गीत संगीत से भर जाता है। बस इन्हीं भावों को हमारे फिल्मी संगीत ने अनगिनत मधुर गीतों में अमर कर दिया है। तो आज का ये संगीतमय कार्यक्रम उन्हीं सदाबहार गीतों को समर्पित है जिन्होंने सावन की हर अनुभूति को सुरों में पिरोया है। ये थी हमारी आज की इबारत, और इस इबारत को पढ़ने के बाद हमारे श्रोताओं ने इतनी खूबसूरत इबारत अपने अपने शब्दों में हमारे सामने रखी है जिसे हम पढ़ेंगे इस गीत के बाद। आयो रे, आयो रे। महेंद्र कपूर और साथी फिल्म का नाम बंधन, इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन। तो सावन में भीगा जाए, सुरीला सफर शुरू हो गया है। सावधान।

जी हाँ, सावन आ गया है और ये गीत तो महेंद्र कपूर और साथियों ने फिल्म बंधन के लिए गाया था। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई सावन आ गया है और हम इससे बेखबर कैसे हो सकते हैं? देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने सावन की बौछारों से भीग गए हैं। कुछ श्रोता तो लिख रहे हैं कि हालांकि उनके शहर में अभी बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रमों के जरिए महसूस करेंगे कि सावन की कुछ फुहारें उनके भीतर महसूस हो। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश में फिर एक बार सावन के भीगे मौसम की बात है तो गानों से जरूर तरबतर हो जाएंगे। सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि धरती और आकाश के मिलन का महाउत्सव, ये चातक की प्रतीक्षा, कृषक की आशा और विरहियों की व्याकुलता का सघन मेघ है। जब ग्रीष्म की तपन से झुलसी वसुधा पर स्वाति की बूंदे गिरती है तब मिट्टी से सौंधी महक उठती है। ये महक प्रकृति के नव श्रृंगार की पहली घोषणा है, इसलिए ये हृदय का राग है, मिलन का बंधन है, मानवीय भावनाओं के चरमोत्कर्ष का काल है और सावन एक शाश्वत अनुभूति है। बहुत सुंदर भाव आपने अपनी इबारत में भेजा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन के इस महीने में सुरीले सफर की खूबसूरत इबारत का, सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि हमारे मन का सबसे कोमल एहसास है। सावन की फुहारों में प्रेम का संदेश है, झूलों की पींगों में बचपन की हंसी है, मोर के नृत्य में प्रकृति का उल्लास है और पपीहे की पुकार में विरह की मधुर टीस भी है। फिल्मी गीतों में भी सावन कभी मिलन का बहाना बनकर आया तो कभी बिछड़ने वालों की आंखों में बरसता रहा। सुनेंगे इस संगीत में सावन में सुरीले सफर में उन सदाबहार गीतों को जिन्होंने बरसात की हर बूंद को सुरों का मोती बना दिया। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज इबारत आती थी मगर ऐसी न थी। चेतक पक्षी को जैसे सावन की एक बूंद का इंतजार रहता है, हमें भी सुरीला सफर की बागडोर कौन संभाल रहा है उस पोस्ट का इंतजार रहता है। क्या बात है, सावन आए और विविध भारती पर इससे जुड़े गीत न बजे ऐसा संभव ही नहीं। सावन केवल एक ऋतु नहीं, आशा, विश्वास, मिलन, विरह और प्रतीक्षा का प्रतीक है। हमारे लिए सावन आए न आए, जिया जब झूमे सावन है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी आवाज, मेरी आवाज सुरीला सफर को और सुरीला बना देती है। क्या बात है, सावन सिर्फ बारिश की बूंद नहीं लाता बल्कि मन में एक नई ताजगी भर देता है। जब सूखी धरती पर पहली बूंद पड़ती है तो सौंधी महक से हर कोना महक उठता है। पेड़ पर पड़े झूले, बादलों की गड़गड़ाहट और हरी भरी पत्तियां सब मिलकर जीवन में नए रंग भर देते हैं। आपने भी कुछ गीत चुने हैं जिनका जिक्र आपने किया है, तो देखना यह कि आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या आपके

ईद से मिलते हैं वो गीत। तो जब सुरीला सफर पर निकल ही चुके हैं, सावन आ ही गया है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। बताइए, आपके आसपास कहीं झूला टंगा है किसी पेड़ की टहनी पर या घर में? बताइएगा, क्या आपने झूला झूला इन दिनों? फटाफट लिखिएगा अपना एहसास, कितनी ऊंची पींगे बढ़ाई आपने ये भी बताइएगा।

लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बहू बेगम। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धमाकेदार शुरुआत से लगता है आज सावन में ही भादो आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। यानी आप भी आनंदित हो रहे हैं और सावन में भीग गए हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की

बहुत ही प्यारे होने वाले हैं, क्योंकि सावन जो आ गया है विविध भारती के आंगन में, भाई आपके आंगन में भी तो सावन आ गया है, और सब श्रोता मिलकर मंदाकिनी जी के साथ मस्ती से आनंद लेने वाले हैं। बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंधन फिल्म के महेंद्र कपूर जी की ये जो आवाज थी शानदार गाने से सावन की शुरुआत सुरीला सफर कार्यक्रम में हुई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली बार ये गीत सुनने को मिला है, सुरीला सफर में बज रहा है या बहुत लंबे से समय के बाद इस गीत को बजाया गया है, धन्यवाद देती हैं आप। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की सुरीली यात्रा अत्यंत सुखदायी लग रही है, क्योंकि आज की विशेष कड़ी आपके द्वारा सावन में वर्षा की ठंडी ठंडी फुहार जैसे कर्णप्रिय गीतों से सजाई गई है। भाई जब सावन का मौका है और सुरीला सफर है, हम और आप साथ हैं, मिलकर इस यात्रा पर निकले हैं, तो यकीनन जो सफर है वो सुरीला होना लाजिमी है ना। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना आकाश का मन हुआ कि चलो धरती से मिले, हाथ बढ़ाकर उसके स्पर्श की पावन अनुभूति का आनंद मैं भी लूं, अपने लंबे लंबे हाथ पानी की धार के रूप में फैलाएं और अंततः स्पर्श कर ही लिया, बस फिर क्या था, माँ तो माँ ही होती है। खुश हो हरा भरा श्रृंगार करके, अच्छा श्रृंगार करके झूमने गाने लगी, और तब से वे दोनों हर साल मिलते हैं और इस मिलन के उत्सव को उनके साथ हम सभी झूम झूम कर मनाते हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बारिश रूपी झड़ी लगने वाली है, गीतों की बूंदों के रस में डूबे हुए स्नेहिल मंदाकिनी जी और सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूं। ये सच है कि ऋतु में सावन खूब भाता है, बचपना हो युवा हो या 50 से ऊपर, बारिश में भीगने का अपना आनंद होता है। हाँ, पर मन के भाव हर उम्र में अलग अलग हो सकते हैं, पर बारिश रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए, मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, बहुत अच्छे लगते हैं गीत सुनना। बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे बचपना हो चाहे युवावस्था हो या 50 के पार का हमारा मन हो, ये जो बारिश है, ये जो सावन है, ये जो मौसम है, हमें हर उम्र में उतना ही उल्लासित रखता है जितना हम हर वक्त रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी मौसम को किन अर्थों में लेते हैं। अच्छा, तो हमने आपसे पूछा था कि झूले पड़ गए हैं, आपके घर आंगन में भी झूले लग गए होंगे, किसी पेड़ की शाखा पर झूले टंग गए होंगे, कि आपने झूले झूले हैं। अभी ढूंढते हैं आपके जवाब क्या आए। ये बताइएगा कि आपके शहर में सावन बरसा के नहीं, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे कि आपके शहर में बरसात हुई कि नहीं, हुई तो कितनी हुई, कब से हुई, और आपने सावन का जो ये आनंद है लिया या नहीं। यह आपका मन सूखा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुरीला सफर में आज हमारी कोशिश यही है कि हम भीग जाएं तन मन से। यह आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आशीर्वाद, गुलजार साहब के बोल, वसंत देसाई की धुन।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेलकर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा कि नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही ही, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहां तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफर में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहां सावन की बौछारें हमें भीगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे भीगे हैं कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि कहा जाता है कि सावन मास में ही अच्छाई, तो हमने आपका विचार पढ़ दिया था। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं सलिल चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर, मन्नाटी और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन। अच्छा बताइएगा, हमारे एक श्रोता ने कहा आपके दो सवालों का क्या हुआ। नहीं नहीं, आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना। बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ।
1: जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
0: हमारे बहुत सारे श्रोता खेत खलियान में बैठकर ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे। बताइएगा कैसा लग रहा है आपको वहाँ बैठकर।

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे, उसे करना बहुत जरूरी था, पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो न सबने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में, बस फिर क्या था हम लिखने लगे। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि यह सावन हर साल आता है मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है, कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगावा पन्ना है जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है। सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना देता है। मोर नाचने लगते हैं, कोयल की कूंक गूंजने लगती है, पानी की बूंदे धरी पर पड़ती है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और हरियाला सावन ढोल बजाता आता है। सावन का महीना और इस तरह से हम सावन के महीने को जीते हैं। तो हमारे श्रोता लगातार लिख रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब भेज रहे हैं कि नहीं। भाई आज तो बिल्कुल सीधे साधे सवाल आपसे किए जा रहे हैं ताकि सुरीला सफर में कहीं रुक के हमें दिमाग पर ज्यादा जोर न देना पड़े कि आज जो हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। तो हमने आपसे सीधा साधा सवाल किया था कि आपके शहर में सावन बरसा या नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर खेत खलिहान में या आपके आसपास झूले लगे कि नहीं, आपने झूला कि नहीं, इसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है। वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का, या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहां हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी ये महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीना नहीं आता था लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफी रूमानी हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है, बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो बालपन वाले झूले कहाँ मिलते हैं मंदाकिनी जी, जो पेड़ों पर लगे रहते थे अब तो पार्क में झूले होते हैं। अच्छा आज भी

जब आप गांवों में जाते हैं ना, तो वहां पर आपको पेड़ों पर झूले टंगे हुए मिलेंगे, है ना। गांवों में, ढाणियों में जाकर देखिए, वहां खेतों में, खलिहानों में पेड़ों के आसपास झूले लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां घूंघट अपने में, वो अपनी पूरे पारंपरिक पोशाक में होती हैं मतलब, और झूला झूलती भी आपको मिल सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफर तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादलों को देख पपीहे की तान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है, जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवंत कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है जहां देखो हरियाली हरियाली होती है। इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है और उस सफर पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफर का आनंद आज उठा रहे हैं और आप इस सुरीला सफर में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

जी तो जब बात चल रही है सावन की, तो जब बादल खुलकर बरसते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अनकहे दर्द को कहना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि सुरीला सफर के इस यात्रा में हमारे साथ आ जाइए और अपनी तन्हाई को दूर करिए इस गीत के साथ।

0: ने प्यार बरसाया।
1: उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी। लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। इसीलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रुमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों के सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है। क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले धुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सब पत्नी हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत ने हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई कि आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है, बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना, सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना, अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक, काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, आहा हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पतिदेव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कटी हुई ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपके चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म

पकौड़ियाँ खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई? हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में, जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए, और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे, और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताजा हो जाती है? कम से कम शब्दों में बताना है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रोमानियत से जीता है तो उसकी जिंदगी क्या कहने। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूं और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूं, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है, बारिश में बस कुल्हड़ वाली सौंधी सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है। हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है। उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के शानदार गीत, आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम, बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूँ कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है, बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में, इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं का चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया। कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं, और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी, अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है, और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाजत देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफर से। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो ये है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

कहा दैया, दाय उठाय लियो गिर नक पर बंत बजावत देन चरैया, जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक रूप से साकार हुए। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
4: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
3: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह है

0: ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर,
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले

0: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले दो दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 500 स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध्य आनंद और थारू मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: करती हो, हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया सांस है, आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान पंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो।
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है सहेली। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजी मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप बार बार ये कह रही हैं।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही
1: है ना। अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती
2: हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन किन बातों
2: की? साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया क्षमा मांग ली तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
1: उन पर इस विषय पर भी तनाव बहुत होता है
2: जी।
1: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
2: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
1: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है, बहुत विराट है
2: जी।
1: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये साड़ी
2: दी थी। तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है, और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही है अगर हम
1: और ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है। और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो जाती है।
2: वो खाने का जायका बढ़ा देती है
1: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का। सुनते हैं ये गाना।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की, और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपनी सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाले रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों के डिजाइन माहेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, और भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं तो
1: है?
0: झगड़ती नहीं।
1: ऐसा नहीं हो
0: नहीं,
1: सकता।
0: बिल्कुल
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे
0: नहीं।
1: कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती।
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे, इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी
1: धीमी
0: आवाज
1: आवाज
0: में, तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल
1: ये
0: झगड़े।
1: नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। और भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर
0: तो
1: गए
0: बात
1: होंगे ना।
0: की पत्नी से डांट खानी
1: हाँ,
0: पड़ेगी।
1: क्यों ना, आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की
0: तो
1: बात।
0: हमने तो इसलिए बता दिया, और आपने भी बता दी
1: हाँ,
0: कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही
0: तो
1: सामान्य सी बात है ना,
0: हाँ,
1: झगड़ा होना।
0: लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी, कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर। मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते हैं, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हें बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी, कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है,
0: बिल्कुल।
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं। पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता हैं, इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी, जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का, कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है, वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी, क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है, और वो कहां से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं, और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहां जाए, उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है, और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए, तो अलग होना बेहतर होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं, तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर

0: क्या असर होने वाला है, बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा, उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर भी चाहिए,
1: प्यार चाहिए,
0: प्यार भी चाहिए और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है, लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं इन चीजों की, लड़ाई झगड़ों के लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है और काउंसलर्स मतलब दोनों के बातों को सीक्रेट रखते हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जायटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है, यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने का,
1: यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना।
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं। सुनते हैं ये गाना।

तेरा मेरा साथ रहे, हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बातें। कितनी अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि, मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि ये

0: रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था,
1: हाँ
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में, आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे
1: और
0: में,
1: मोबाइल से भी सुनते
0: हम
1: हैं बहुत
0: मोबाइल पे
1: सारे।
0: भी सुन लेते हैं क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता है जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार की चल रही थी, तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है, मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे। हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे, तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मनमुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मनमुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है।
1: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं।
0: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर हाँ गीली तौलिया रख दी,
1: या फिर सब्जी लाने के लिए बोला था तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई
0: खास
1: कारण नहीं होता।
0: बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, और पति पत्नी के बीच या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं, कि वही वही बात ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए सोनाली जी, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ।
0: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने भी जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
1: मैं बना रहा हूँ तुम पियोगी क्या,
0: हाँ ये वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं।
1: अरे बहुत सारे हैं उसके तो, बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी, चलिए ये साड़ी खरीदना
0: तुम्हारे लिए ले आए,
1: या फिर क्षमा कर देना सबसे जरूरी बात।
0: लेकिन वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम की दीवार है,
1: बहुत मोटी दीवार होती है।
0: वो ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़
1: आज
0: हटाओ,
1: तो पूछूंगा ही नहीं, आज तो पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात करने ही नहीं वाली।
0: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
1: गाना सुनना,
0: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि भाई,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं क्या, नहीं आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ वही अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकौड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बतानी,
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है हमारे, बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिखकर भेजी जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है

0: और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है। अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है दबाव के चलते, परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहाँ
1: जाता है,
0: हाँ, चोटिल होता है। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी ना मांगे।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना। तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, मैं तो मैं दूसरे रूम में फोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
1: आप कान में हेडफोन लगा लीजिए ना।
0: हाँ, वो भी एक तरीका
1: है। ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ, और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती है जबरदस्ती मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
1: एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए चोटन को उत्पात, क्षमा बड़प्पन की निशानी है, क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भी तो कुछ
1: एक साथी लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानी की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं, उसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी कि जो रिश्ता होता है ना कांच की तरह होता है, कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास से भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है, जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो
0: और
1: बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते हैं एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल। तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है।
1: सभी की और
0: अगर
1: खासकर बच्चों की भलाई
0: हाँ,
1: है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब
0: अच्छा,
1: हम चाय पीने वाले
0: क्या बात है भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए
1: मिटा
0: और
1: दीजिए
0: हाँ,
1: दूरी।
0: माफी मांगिए और
1: जी
0: खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: जी
0: और
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े,
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं।
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करे और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाले। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाए और जरूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपनी पसंद अनुसार पीस ले और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसे।
0: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े

0: चम्मच सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां और जीरा एक छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग एक चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले। इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू न आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून ले, सारी सामग्री को ठंडा होने दे, फिर इसमें नमक हींग डालकर दरदरा पीस ले। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काटकर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले, इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दे। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। करौंदी की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काट कर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
0: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी,
1: चटनी है ना? क्या बात है। ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
0: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले।
1: मिल जाए।
0: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है।
1: मुझे लगता है
0: और
1: श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना?
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये एक घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसमिशन
2: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है। मेरा बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी। तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ, और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे

0: वो मुझे तब से पता थे, चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको बेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल
0: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और
0: जी हाँ जी
1: दोस्तों से
0: हाँ,
1: अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
0: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर
0: किताबें
1: से
0: लेने
1: लेने की
0: जाने की
1: जरूरत
0: जरूरत
1: नहीं
0: ही
1: थी।
0: नहीं थी, क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा,
1: बाल
0: गुड़िया, बाल
1: भारती,
0: भारती, राजा भैया, कई किताबें थी,
1: ढेर
0: कई
1: ढेर,
0: तरीके,
1: बहुत
0: ढेरों ढेर।
1: सारी
0: और
1: थी।
0: पराग, तो मैं अभी भी कहता हूं कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग,
1: बिल्कुल
0: जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे, जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए, तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा।
1: वाह,
0: तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहां से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
0: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम पे, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुध बुध छोड़
1: बिल्कुल,
0: के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की
0: और
1: किताब के अंदर
0: कोर्स की
1: कॉमिक्स
0: किताब के अंदर
1: रखिए।
0: कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लगे हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी
0: कि
1: तौर पर हो
0: हाँ,
1: रहा था।
0: जरूरी तौर पे
1: हाँ
0: हो रहा था कि एक और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था, पापा
1: क्या
0: जी को थोड़ा बहुत
1: बाकी
0: था।
1: बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी, क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो
0: लोक
1: उस जमाने में
0: कथाएं,
1: हिंदी
0: हाँ
1: अनुवाद आया
0: हाँ
1: करते थे, वो भी मौजूद
0: बेहतरीन,
1: रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन का
0: मुल्ला
1: छापा
0: नसरुद्दीन, हाँ मुल्ला
1: था,
0: नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
1: राधुका
0: कैरेक्टर,
1: प्रकाशन।
0: हाँ राधु का प्रकाशन, और उसमें एक कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ
1: क्या
0: नाजानू की
1: बात है,
0: कहानियां,
1: वाह।
0: और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो ऑलमोस्ट पोपाई, पोपाई के जैसा था, मगर
1: बिल्कुल
0: काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी, और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी,
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है मेरे
1: सबने
0: जनरेशन में।
1: पढ़ी बिल्कुल।
0: जी जी
1: तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल, तो
1: कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था, जो
0: मतलब
1: मैंने खरीदा
0: बहुत ही लेट आया।
1: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण है, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं।
0: वाह,
1: बहुत
0: वाह,
1: लंबे
0: वाह।
1: समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में,
0: पाकिस्तान
1: हाँ, में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे मुझे ऐसा लगता था।
0: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: हाँ,
0: दिख
1: जैसा
0: रहा
1: वो,
0: है।
1: हाँ, जैसी जिसकी नजर।
0: हाँ।
1: तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
0: तो उस
1: और
0: दौर
1: ये
0: के कौन
1: प्रोफेशन
0: कौन से
1: है।
0: नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक

0: फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं। हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
1: पहले ही बॉक्स में नाम आता था,
0: पहले बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मेंड्रिक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर भी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूं और मैं ये भेज सकता हूं छपने के लिए। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा भेजता था
0: वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में। अच्छा। और सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्रॉइंग्स बेहतर करता हूं लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देखे लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में, मतलब कार्टूनिंग में मेरा

0: रिजेक्शन नहीं हुआ कार्टूनिंग में, मुझे लगा कि यहाँ तो
1: सही
0: झंडे
1: है।
0: गड़ गए। पहले ही दिन पहले ही कार्टून गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे। उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में। तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपये, चाहे जितने भी कार्टून। तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा, क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 100 रुपये में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे। अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना
1: ये
0: दौड़ना नहीं
1: हर्डल
0: करना
1: खत्म
0: पड़ता था।
1: थी।
0: हाँ, मुझे याद है 56 रुपये का सेट आता था, तो दो सेट
1: हाँ,
0: में
1: और वो
0: खरीद
1: बड़ा महंगा लगता था
0: सकता।
1: उस
0: छप्पन रुपये
1: वक्त।
0: बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपये मिल रहा था महीने का, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था महीने के। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है। लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से
0: हाँ
1: देने
0: हाँ हाँ
1: लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा। मुझे मेरी
1: हाँ
0: कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी,
1: अच्छा
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए। जितनी
1: अपनी
0: बड़ी,
1: होनी
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की। मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
1: कितने साल चलाई?
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा, और किताबें सब वापस आईं सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना, तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी
0: अलग
1: है।
0: कहानियां हैं। वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज
1: बहुत
0: है।
1: सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: तब
0: तो
1: तो अच्छे
0: मजे की बात ये
1: पैसे।
0: थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपये भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: रकम थी
0: बहुत
1: ये तो।
0: बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और आप
1: हाँ,
0: कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर
1: तो
0: पढ़ाई कौन
1: सेट था
0: करेगा, पढ़ाई कौन
1: मामला।
0: करेगा।
1: अच्छा, फिर?
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप,
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया।
0: तबाह हो गया मैं,
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे
1: इसकी
0: समझ में नहीं
1: आगे की
0: आया।
1: कहानी सुनेंगे। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन
0: सोचना
1: को अंधेरे
0: पड़ेगा,
1: चलेंगे।
0: चलिए।

0: नवी में आप फेल हो गए।
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है,
0: हाँ कि फेल हो
1: हाँ
0: जाऊंगा,
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं
1: लगता है
0: थे।
1: कुछ। नहीं मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे
1: वो
0: नवी
1: पूरा
0: होता
1: पूरा
0: भी
1: ऐसा
0: फिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा 10वीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया
0: नहीं,
1: जाता
0: और
1: है,
0: ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट
1: पीछे
0: गया,
1: छूट
0: अब
1: गया।
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक
0: बिल्कुल
1: हाफ पेंट था फिर फुल पेंट आया,
0: हाँ।
1: तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून छप रहे हैं, तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास 9th का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना
1: कुछ
0: कहीं
1: कहीं ना
0: कुछ
1: कहीं
0: छप
1: कुछ
0: रहा
1: ना कुछ
0: है।
1: छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है ना कि हम ही हम
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पे कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवी में मैं फेल हुआ उस दिन तो मौत थी मेरी, मतलब लाइफ का जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो यही लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो
0: बिल्कुल
1: 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे, सबको पता है आप 9th में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप 10वीं नहीं गए, आप वापस 9th रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा। एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका, उसमें बच्चे की गलती है नहीं है।
0: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता, वो
1: हाँ
0: जो एक्सेप्टेंस
1: स्टिग्मा
0: वाली
1: जिसको बोलते
0: बात
1: हैं
0: है।
1: ना, तो स्टिग्मा आ
0: हाँ
1: जाता है वो,
0: हाँ
1: तो स्टिग्मा तो आ गया था। और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो,
0: हाँ
1: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है अभी तक, आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जा पाए
0: नजरें
1: हैं,
0: कैसे मिलाएंगे?
1: नजरें
0: हाँ
1: कैसे मिलाएंगे। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
0: हाँ
1: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
0: पूरे एक साल।
1: देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो
0: बिल्कुल।
1: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है ना,
0: घर
1: ये
0: घर
1: एक साल
0: वालों
1: का
0: का एटीट्यूड क्या था?
1: कुछ खास ऐसा। मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है, तो मैंने उनके साथ काम

0: काटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका, शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल
1: का
0: होता है
1: उस
0: तो वो
1: बच्चे के ऊपर
0: अपने
1: क्या असर
0: अपने
1: पड़ता है।
0: आप में, वो एक मौत से गुजर रहा होता है, उसके
1: करेक्ट।
0: ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पाके निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद।
0: अच्छा,
1: नाइन्थ सेकंड ईयर।
0: ये एक तरह की राहत,
1: एक तरीके की राहत थी।
0: हाँ।
1: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो घबराहट नहीं थी।
0: हाँ,
1: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में।
0: हाँ,
1: क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो नाइन्थ और टेंथ यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th।

0: निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
1: अच्छा।
0: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो रही
1: होती
0: थी
1: रही।
0: उसी शहर में।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई, मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे जितना झेल सकते थे आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का। तो
1: एक
0: वो
1: नए सिरे से बनने की तैयारी थी।
0: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
1: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
0: सुपर कमांडो 2 की पहली किताब। हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी वो, और वो सम मेरे लिए काम कर गई बेसिकली। तो
1: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी करीब
0: हाँ,
1: करीब
0: धीरे
1: से,
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे धीरे।
0: करके और
1: मेरी मेरी
0: उनका
1: पीढ़ी,
0: अंत
1: मेरे
0: हो
1: ख्याल से
0: गया।
1: कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूं तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूं। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज को खुद करके ना देखूं, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीजें। कार्टून छप रहे थे लेकिन मुझे मजा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से,
0: अच्छा
1: तो हाँ ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में 2 बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है? तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है? तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे? तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिस जाता था, कार्टून्स देखे आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से, तो
0: अरे
1: 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिस होते थे, तो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्रांड की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूं, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूं उससे अटैच भी हूं और डिटैच भी हूं। अटैच हूं जब तक मैं उसको बना रहा हूं, डिटैच हूं द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूं। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो
0: बिल्कुल
1: सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो

0: की भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके,
1: अरे
0: वो
1: बाप
0: कहीं
1: रे।
0: मेरे पास रखा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं। मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई स्कोप ही नहीं
1: सिस्टमेटिक
0: था,
1: मामला नहीं
0: स्कोप
1: था।
0: ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में। मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी और जो कोर्सेस थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेस। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम अथाबिरा है। मतलब वहां आप आलोक शर्मा अथाबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम खां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोला कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह।
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार उस
1: मौजूद
0: स्टूडियो में
1: थे।
0: थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियां पसंद आने लगी, उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्रॉइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं था।
1: साथ।
0: गौतम कॉमिक्स था, गौतम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल जाता
0: निकल
1: है।
0: जाता है। अब वो काम बन जाता है कि
1: यस
0: आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6, 7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मंगा, जिनको बोलते हैं मंगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मंगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मंगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के RJ हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके।

0: बात, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में, तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था, तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया, और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने
1: आदमी
0: लेकिन आदमी काम का है।
1: हाँ
0: लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे, ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है, मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के, मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉइंस बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहां आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया, तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं, मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी, वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह।
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए, फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट।
0: हाँ, चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल।
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: लिफ्ट करा दे।
1: अदनान समी की आवाज।

गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा के विषयों के साथ साथ हम आपको सुनवाएंगे एक वार्ता और साथ ही साथ फिल्म संगीत से कुछ गाने। तो चलिए चर्चा का ये सिलसिला अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं असम के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और जन नेता लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई जी को, जिनकी पुण्यतिथि हमें उनके व्यक्तित्व और योगदान को याद करने का अवसर देती है। दोस्तों, गोपीनाथ जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि ऐसे जननायक थे जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश और समाज की सेवा में लगा दिया। असम के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी गहरी है कि उनके प्यार से उन्हें लोग प्यार से लोकप्रिय कहा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जब देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उस समय बरदलोई जी ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने लोगों को जागरूक किया और उन्हें देश की आजादी के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भी उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हुई। असम की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को सुरक्षित रखना उनके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा। इनका मानना था कि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहां के लोगों को शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन के अवसर मिले। उन्होंने असम के विकास और वहां की जनता के हितों के लिए लगातार काम किया और साथ ही साथ कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। दोस्तों, उनका जीवन हमें यह सिखाता भी है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की सेवा का

एक रास्ता हो सकती है। विसादगी, ईमानदारी और जन सेवा के लिए जाने जाते थे। आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं, तो उनके विचार हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक नजर आते हैं। नई पीढ़ी के लिए गोपीनाथ जी का जीवन एक प्रेरणा है। वे हमें बताते हैं कि समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए बड़े पद से ज्यादा जरूरी है एक मजबूत संकल्प और ईमानदार सोच। आज उनकी स्मृति को नमन करते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार सकारात्मक योगदान भी देंगे। दोस्तों, यही लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: वेलकम बैक दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में चलिए अब वार्ता सुनते हैं। विषय है मातृभाषा में अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास। वार्ताकार है महिमा मित्तल।
4: नमस्कार, आज फिर से आपके सामने हाजिर है आपकी बहन, आपके मित्र महिमा मित्तल। पुरानी मैं हूँ पर मुद्दा नया है। आइए बात करते हैं कुछ इस टॉपिक पर जो आप प्रतिदिन सुनते हैं पर आप उसकी गहराई नहीं समझ पाते हैं। मातृभाषा सुनने में कितना सामान्य अच्छा लग रहा है, शब्द लग रहा है, पर अगर आप इसकी गहराई समझेंगे तब आपको पता चलेगा। किसी भी चीज में मात्र आ जाता है तो वह अपनापन सा सुनाई देता है, पर आज भी हम जब बाहर निकलते हैं तो हम बचते हैं अपनी मातृभाषा से, शायद इसलिए कि हमें लगता है कि हमको अपमान का ना सामना करना पड़े। इस भागती दुनिया में हम सबने जैसे अपने आप को दिखावे का चोला पहना लिया है। हम लोग को लगता है कि हम अपने आप को कितना श्रेष्ठ दिखाने के लिए पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी भाषा अपनाएं, तभी दूसरे को हम लगेगा कि हमें ज्ञान है और हम सभी दिखेंगे। पर आपको पता है, आप कितना भी पश्चिमी सभ्यता अपना लीजिए, लेकिन जब आपको वह एहसास होगा कि आपको कहीं कुछ सोचना है तो आप अपने मन में उस मातृभाषा में ही सोचेंगे। मातृभाषा केवल एक अक्षर नहीं है, वह एक कारण है जो आपको मिलाता है अपने से। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां आप किसी को नहीं जानते और आपका कोई नहीं है, आपका माने गए हैं, और वहां पर आपको देश का एक मिलता है जो आपसे आपकी भाषा में बात करता है, आपकी गांव की भाषा में, तो आप कुछ नहीं देखेंगे उस वक्त, आपको लगेगा यह भाई है, यह अपना है। तो कुछ इसी तरह हमको, हमसे जोड़ती है मातृभाषा। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, संस्कृतियों का देश है, और उस संस्कृतियों को आपस में जोड़ने के लिए एक नींव है मातृभाषा। आप जानते हैं जब आप किसी से अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी बेइज्जती, अपमान नहीं होता है, वहाँ आपको विश्वास होता है कि कुछ तो है जो बता रहा है कि मेरी इस जगह की पहचान क्या है, संस्कृति क्या है। आप जब तक अपने गांव से जुड़े हैं, जब तक अपने जड़ से जुड़े हैं, तभी तक आप सुरक्षित हैं। कितना भी पेड़ ऊंचा हो जाए, कितना भी फैल जाए, लेकिन जब तक उसकी जड़ से वो जुड़ा है तब तक वह पेड़ कहलाएगा, नहीं तो वह लकड़ी काट कर जला दिया जाएगा। अगर आप अपने जड़ से जुड़े हैं, आप अपनी मातृभाषा से जुड़े हैं, आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, तभी आप कहलाएंगे कि आप प्रायः देश के, प्रायः गांव के निवासी हैं। मातृभाषा में अभिव्यक्ति कुछ महत्व रखती है। अभिव्यक्ति क्या होता है कि हम किस ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, किस ढंग से उसको व्यक्त करते हैं, कुछ उसका महत्व है। अगर आप बात करें तो सांस्कृतिक जुड़ाव, मातृभाषा हमारी संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह हमें अपने पूर्वजों की विरासत से जोड़ती है और हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद करती है। आत्मविश्वास, अब आप यह दो वर्ड आपस में जोड़ नहीं पा रहे होंगे कि मातृभाषा और आत्मविश्वास में क्या संबंध है। कुछ बहुत बड़ा भाषण देना होता है तो आप सोचते हैं कि मैं यह भाषा अंग्रेजी में बोलूं या किसी और पश्चिमी सभ्यता में बोलूं तो यह सामने वाले को लगेगा कि मुझे इस चीज का ज्ञान है, पर शायद आप भूल जाते हैं कि उस चीज में कभी भी आपको आत्मविश्वास नहीं आएगा। आपको आत्मविश्वास आएगा अपनी ही भाषा में बोलने पर। आज हम उस देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाकर अपनी भाषा में वक्तव्य देते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। उस देश में हम 10,000-20,000 रुपए की नौकरी के लिए अपनी मातृभाषा क्या, अपना हिंदी क्या, अपनी अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हुए कहते हैं कि जो हिंदी बोलते हैं उनको आज के समय में कोई समझ नहीं है। यह सही है, हर देश अपनी भाषा से खुश है, लेकिन हम नहीं खुश है। हमें लगता है कि हमारी भाषा तुच्छ है, जब आप में वह विश्वास नहीं आएगा अपनी भाषा को लेकर, तो दूसरे व्यक्ति में यह विश्वास कभी नहीं आ सकता। मैं एक छात्रा हूँ, एक समय में अध्यापिका भी हूँ, लेकिन दोनों के होते हुए भी मैं आपको चीज बता रही हूँ कि मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी है, हिंदी माध्यम में पढ़ाया है, एक समय में अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाया है। लेकिन आप यह बात नोट कर लीजिए कि जितना आत्मविश्वास, जितना ज्ञान आपको अपनी मातृभाषा, अपनी दिनचर्या, अपने माता पिता, अपने गांव से मिल सकता है, वह ज्ञान आपको कोई प्रकार की बुक नहीं दे सकती है। जब आप अपने गांव में रहते हैं, जब आप देखते हैं कि प्रायः व्यक्ति का चेहरे का भाव क्या है कि जब वह कुछ व्यक्त कर रहा है, तो आप उसके भाषा से तो जुड़ते हैं, साथ में उस इंसान से भी जुड़ते हैं। मातृभाषा से बात करने में आत्मविश्वास बढ़ता है और यह हमें अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। यह आत्मविश्वास जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इंसान कितना भी सीढ़ी चढ़ ले सफलता की, लेकिन अगर उसमें यह आत्मविश्वास नहीं है कि मैं इस सीढ़ी पे खड़ा रह सकता हूँ, तो आप यह बात लिख के ले लीजिए कि वह उस सीढ़ी से कभी भी गिर सकता है। तो यह जरूरी है कि आप जिस मुकाम पर है, आपको लगे कि यह मुकाम मैंने अपने से पाया है, अपनी सफलता से पाया है, अपनी भाषा से पाया है, अपने ज्ञान से पाया है, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। बेहतर समझ बनती है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी बेहतर समझ नहीं है उस चीज में, तो आपका कोई अस्तित्व कोई नहीं रहेगा। मातृभाषा में बातचीत करने से हम बेहतर ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, रिश्तों में मजबूती आती है, एक सकारात्मक माहौल बनता है, प्रभाव बनता है उस चीज को जो आप जल्दी से जल्दी नहीं खत्म कर सकते। कुछ सुझाव है मेरे, अगर आपका बच्चा 1 साल का 2 साल का धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको अभ्यास कराइए अपनी मातृभाषा की। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें कोई किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं है, इसमें यह बात है कि आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी मातृभाषा को अलग महत्व दिया है। जिस देश की एजुकेशन पॉलिसी यह सोच के बनती है कि बच्चे को मातृभाषा में वह चीज पढ़ाई जाए जो उसको अभी तक किसी और भाषा में पढ़ाई जा रही थी, तो यह चीज आप अपने से जोड़िए कि मातृभाषा का आज भी कितना योगदान है हमारी चीजों में। जिस देश का नाम ही विविधता का देश है, हम वो पेड़ हैं जिसमें अलग अलग फूल खिलते हैं। तो समझिए कि अगर वो पेड़ में केवल एक ही प्रकार का फूल खिलेगा, तो उसमें कोई अलग बात नहीं रह जाएगी। वह अलग बात तब तक है जब तक अलग अलग प्रकार के फूल खिल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि उसको सींचे। मातृभाषा में बोलने का अभ्यास कराइए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ मातृभाषा में बात करिए। शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सहज हो जाएंगे। सुनिए, पढ़िए, अपनी मातृभाषा में लिखी किताबें पढ़िए, समाचार सुनिए, फिल्में देखिए। इससे आपकी शब्दावली और समझ आपके नए शब्दों वाक्यांशों में होगी, जो आपकी अभिव्यक्ति को और समृद्ध बनाएगी। सोचिए, सकारात्मक सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, मातृभाषा पे गर्व करिए। यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपनी मातृभाषा की और बेहतरीन तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको पता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और फिर ऐसे पूरा गांव, फिर जिला, फिर शहर, फिर देश बनता है। अगर यह बात मेरी कुछ लोग भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यह मेरा आपसे निवेदन है कि अगर हम अपनी चीजों की, हम अपनी वास्तविकता की, हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो सामने वाले को कुछ सेकंड नहीं लगेगा उसे ध्वस्त करने में। हमको एक खादी का वस्त्र पसंद नहीं आता है, पर हम अपने आप को उच्च दिखाने के लिए वह चीज खो रहे हैं जो हमारी ताकत थी। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पश्चिमी सभ्यता वाली हमारी भाषा को अपनाएं? यह तभी हो सकता है जब आप में वह आत्मविश्वास होगा। जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक मातृभाषा में कुछ अलग खास नहीं होगा। यह मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगी कि जब तक आप में विश्वास नहीं, तब तक आपकी मातृभाषा में कुछ खास नहीं। आप आज जाते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, कुछ भी लिए, तो अपनी भाषा प्रस्तुत करने में अपना आत्मविश्वास रखिए और सामने वाले से कहिए कि मैं इस देश का निवासी हूँ। तो बहनों, भाइयों, मेरा फिर से निवेदन है, कुछ करा जाए, अपनी जड़ों को बना के रखिए, नहीं तो एक आंधी सब कुछ तबाह कर देगी और आप अपनी नींव हिलते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। और आज तो हमारे पास महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भी नहीं है जो बता सके कि क्या जरूरत होती है अपने भाषा की, अपने देश की, अपनी सभ्यता की, संस्कृति की। तो यह हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।
3: मातृभाषा में अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास, इस विषय पर वार्ता आप सुन रहे थे और वार्ताकार थी महिमा मित्तल। दोस्तों, कार्यक्रम में चलिए अब अगली चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आजकल आपने डिजिटल अरेस्ट शब्द जरूर सुना होगा। सुनने में कुछ ऐसा यह लगता है कि जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने से रोक दिया हो, लेकिन असल में डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। यह साइबर ठगी का एक खतरनाक तरीका है जिसमें ठग फोन या वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराकर अपने जाल में फंसाते हैं। मान लीजिए आपके फोन पर अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आती है। सामने वाला व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई, आरबीआई या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताता है और कहता है कि आपके नाम से कोई गैर कानूनी काम हुआ है, और इसके बाद आपको डराया जाता है कि अगर आपने तुरंत सहयोग नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और कई बार ठग वीडियो कॉल पर रहने, किसी से बात न करने और फोन न काटने का दबाव भी बनाते हैं। और डर के कारण व्यक्ति उनकी बातों में फंस जाता है और यहीं से शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का ये खेल। ठग पीड़ित को मानसिक दबाव में रखकर पैसे ट्रांसफर करने या बैंक और निजी जानकारी साझा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, कोई भी असली सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर इस तरह आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती और न ही किसी मामले को खत्म करने के नाम पर तुरंत पैसे मांगती है। दोस्तों, इसीलिए आज के डिजिटल दौर में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। खासकर बच्चों और युवाओं को भी यह समझना चाहिए कि इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते समय सावधानी क्यों जरूरी है। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो उसकी बातों पर तुरंत विश्वास करने की बजाय आधिकारिक माध्यम से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। दोस्तों, याद रहे कि डर ठगों का सबसे बड़ा हथियार होता है, इसलिए घबराइए नहीं, सोच समझ कर कदम उठाइए और दूसरों को भी डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी के बारे में जागरूक कीजिए। याद रखिए कि आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको कल के बड़े मुसीबत या बड़े नुकसान से बचा सकती है।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बालसंग कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं बच्चों? आप सब ठीक ही होंगे। जानते हैं बच्चों, जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग और सम्मान से रहते हैं। कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मित्रों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अच्छे दोस्त हमारे जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाते हैं। और याद रखिए बच्चों, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम मिलकर पढ़ते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तब हर कठिन काम भी आसान हो जाता है। हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी के साथ भेदभाव करना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार करना ही अच्छे संस्कारों की पहचान होती है। कहते हैं, जहां प्रेम और अपनापन होता है, वहां खुशियां अपने आप चली आती हैं। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे की मदद करें और कभी किसी का दिल ना दुखाएं। बच्चों, स्कूल हो, घर हो या खेल का मैदान, हर जगह हमें प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। यदि किसी साथी से गलती हो भी जाए तो उसे डांटने या उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसे प्यार से समझाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव या दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मिलकर काम करने से आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने दोस्तों की मदद कीजिए और खुशियों में शामिल होइए। और बच्चों, हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हमेशा प्रेम से रहेंगे, सभी की मदद करेंगे और अच्छे व्यवहार से परिवार, विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करेंगे तथा अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। आइए बच्चों, सुनते हैं बच्चों के मुख से।
2: सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम कायनात खान है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आभासी दुनिया और असली दोस्त। रोहन 8वीं कक्षा का एक होनहार छात्र था। उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने एक नया फोन उपहार में दिया था। रोहन बहुत खुश था। धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया और इंटरनेट की दुनिया में खो गया। कुछ ही दिनों में रोहन के सोशल मीडिया पे सैकड़ों फ्रेंड बन गए। जब भी वह कोई तस्वीर पोस्ट करता, सैकड़ों लाइक और कमेंट आते। रोहन को लगने लगा कि वह बहुत लोकप्रिय हो गया है। इस चक्कर में उसने अपने पुराने और सच्चे दोस्त अमित और राहुल से बात करना कम कर दिया, यहाँ तक कि वह शाम को उनके साथ खेलने भी नहीं जाता था। जब अमित उसे समझाता कि रोहन, इंटरनेट की दुनिया असली नहीं होती, तो रोहन उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम क्या जानो, मेरे इंटरनेट पर 500 दोस्त हैं

0: मुसीबत का दिन। एक दिन रोहन स्कूल से घर लौटा था। अचानक उसका साइकिल का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके पैर में गंभीर चोट आई और वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसका फोन भी कुछ दूर पर गिर के बंद हो गया। दर्द के मारे रोहन रोने लगा। उसने अपने फोन की तरफ देखा और सोचा, काश मेरे वे 500 ऑनलाइन दोस्त मेरी मदद के लिए आ पाते, लेकिन वर्चुअल दुनिया के दोस्त वहाँ नहीं थे। तभी वहाँ से अमित और राहुल साइकिल से गुजर रहे थे। उन्होंने रोहन को गड्ढे में तड़पते देखा। बिना एक पल गवाए दोनों गड्ढे में उतरे, रोहन को बाहर निकाला, अपना रुमाल उसके जख्म पर बांधा और उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर तुरंत पास के अस्पताल ले गए। अमित ने रोहन के माता पिता को भी सूचना दे दी। डॉक्टरों ने कहा कि सही समय पर अस्पताल लाने की वजह से रोहन का पैर फ्रैक्चर होने से बच गया। रोहन की आंखें खुली। अस्पताल के कमरे में जब रोहन को होश आया तो उसने देखा कि अमित और राहुल चिंता में उसके पास खड़े हैं। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अमित का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर दिखने वाले झूठे लाइक्स और अजनबियों को अपना सच्चा दोस्त मान बैठा था। असली मुसीबत पर तो तुम ही मेरे काम आए। उस दिन के बाद रोहन ने फोन का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई और सीमित समय में मनोरंजन के लिए किया और अपने असली दोस्तों और रिश्तों की कद्र करना सीखा। कहानी की शिक्षा, डिजिटल दुनिया के दिखावे से ज्यादा असली रिश्तों और इंसानों का महत्व होता है। सोशल मीडिया के लाइक्स या फॉलोअर्स कभी भी अपने सच्चे दोस्तों और परिवार की जगह नहीं ले सकते। मुसीबत में हमेशा वे ही काम आते हैं जो असल जिंदगी में आपके साथ खड़े होते हैं। अब मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म और संस्कार। सत्य मार्ग पे चलते जाना, कभी न तुम घबराना, कठिन परिस्थितियाँ आए तो हिम्मत से टकराना, मीठी वाणी सबसे बोलो, सबका आदर करना, दीन दुखी का कष्ट समझकर मदद का हाथ बढ़ाना, क्रोध शत्रु है सबसे बड़ा, इससे तुम दूर रहना, धैर्य और प्रेम का गहना सदा तुम धारण करना, छल और कपट की राहों से अपना दूरी बनाना, ईमानदारी की रोटी में सच्चा सुख पाना, धन आए तो ना करना अभिमान, ज्ञान बांटकर बढ़ाओ सम्मान, उत्तम कर्म ही बनते पहचान, यही है जीवन का असली ज्ञान। धन्यवाद।
1: आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम समीक्षा है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तीन सवाल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के मन में तीन सवाल आए। पहला सवाल, दुनिया में सबसे जरूरी काम कौन सा है? दूसरा, सबसे जरूरी इंसान कौन है? तीसरा, सबसे जरूरी समय कौन सा है? अकबर ने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों से पूछा। सबने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला पूजा करना, कोई बोला राजा, कोई बोला सुबह। अकबर किसी के जवाब से खुश नहीं हुए। आखिर में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम 3 दिनों में जवाब लाकर दो, वरना सजा मिलेगी। बीरबल जंगल में एक साधु के पास गए। साधु बीमार थे। बीरबल ने 3 दिन तक उनकी सेवा की, पानी पिलाया, दवा दी, खाना खिलाया। तीसरे दिन एक घायल सिपाही भागता हुआ आया। उसने कहा, दुश्मन हमला करने वाले हैं। साधु ने कहा, इसे बचाओ। बीरबल ने सिपाही के घाव पर पट्टी बांधी और उसकी जान बचाई। रात को साधु ठीक हो गए। बीरबल ने पूछा, मेरे 3 सवालों का जवाब। साधु मुस्कुराए और बोले, बीरबल जब तुम मेरी सेवा कर रहे थे तब सबसे जरूरी काम सेवा करना था, सबसे जरूरी इंसान मैं था, जब सबसे जरूरी समय वही था, जब सिपाही आया तब सबसे जरूरी काम उसकी जान बचाना था, सबसे जरूरी इंसान वो

था। सबसे जरूरी समय वो पल था। बीरबल समझ गए। दरबार में जाकर बोले, हुजूर सबसे जरूरी काम भलाई करना है। सबसे जरूरी इंसान जो आपके सामने हो और सबसे जरूरी समय अभी है, क्योंकि बीता कल गया और आने वाला कल का पता नहीं। अकबर बीरबल का जवाब सुनकर खुश हुए और उन्हें ढेर सारा इनाम भी दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर पल को कीमती समझो, जो सामने है उसकी मदद करो। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म ही पूजा है। उठो जागो मत रुको, मंजिल दूर सही, रास्ते में काटे हो हिम्मत कम न हो कभी। आलस को त्याग दो मन से, समय की कदर करो, आज का काम कल पर टालो और पीछे रह जाओगे। देखो चींटी को जरा कितना मेहनत करती है, गर्मी में दाना जोड़े सर्दी में सुख से रहती है। टिड्डा गाता रहा सारा दिन, मस्ती में समय गवाया, जब सर्दी आई तो भूखा चींटी के द्वार पर आया। चींटी बोली, भाई टिड्डे मेहनत का मोल समझो, आज नहीं तो कल पछताओगे, समय रहते काम करो। पेड़ लगाओ धरती बचाओ, जल को व्यर्थ न बहाओ, बड़े बुजुर्गों का मान करो, छोटों से प्यार निभाओ। झूठ की राह आसान लगे पर अंत बुरा होता है, सच की राह कठिन सही पर मान सदा बढ़ता है। लालच करके क्या पाया, जो था वो भी खोया, जितना मिला उसी में खुश, यही जीवन का गहना। अकेले चलो तो थक जाओगे, मिलकर चलो तो जीतोगे, एकता की ताकत सबसे बड़ी, दुश्मन भी हार मानेंगे। इसलिए याद रखो कर्म ही सबसे बड़ी पूजा, मेहनत सच और एकता से बनता है जीवन दूजा। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत करो सच बोलो सबकी मदद करो, यही है जीवन का सार, इसी से नाम करो। धन्यवाद।

0: बच्चों आइए चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। आज हम हिरोशिमा दिवस के बारे में जानेंगे। हर वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध से केवल दुख, विनाश और मानव जीवन की हानि होती है। हमें अपने जीवन में प्रेम, शांति, दया और भाईचारे का मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया था। शांति ही प्रगति और खुशहाली का आधार होता है। बच्चों जब दुनिया में शांति होगी तभी आप सभी बच्चे सुरक्षित रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपने सपने को भी पूरा कर सकेंगे। 6 अगस्त का दिन हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि शांति और प्रेम और मानवता है। हमें जीवन में कभी भी क्रोध, हिंसा और नफरत को स्थान नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे और प्रेम से रहेंगे तो हमारा समाज और देश दोनों मजबूत बनेंगे। बच्चों आप ही भारत का उज्जवल भविष्य हैं। आपके अच्छे विचार, अच्छे संस्कार ही एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। हिरोशिमा दिवस का उद्देश्य यही है बच्चों कि इस भयंकर त्रासदी में जान गंवाने वाले मासूम लोगों को याद करना, शांति के संदेश के लिए दुनिया भर में अहिंसा, भाईचारा और शांति को बढ़ावा देना, परमाणु विरोध के लिए भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोकने के लिए परमाणु हथियारों को खत्म करने की अपील करना। बच्चों हिरोशिमा दिवस हमें यह सिखाता है कि शांति सबसे बड़ी चीज है। हमें हमेशा प्रेम, भाईचारे और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि दुनिया सुरक्षित और खुशहाल बनी रहे। आइए बच्चों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, लेकिन उसके पहले संदेश सुनते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

बच्चों आप सब गीत सुन रहे थे, आप सबको पसंद आया होगा। आइए चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई थी। लाखों भारतीयों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल की यातनाएं भी

झेली। उनके साहस और बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिली। और बच्चों, हमें अपने देश के वीरों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। ईमानदारी और मेहनत से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना था। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत यातनाएं दी गईं, परंतु उनका हौसला कभी भी कम नहीं हुआ। इस आंदोलन ने पूरे देश में आजादी की भावना को और मजबूत किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता की लड़ाई को नई गति दी। देश के कोने कोने से लोगों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों ने भी आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरे देश में एकता की लहर दौड़ गई। उनके साहस और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उसके विकास में अपना योगदान देना चाहिए। ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत से हम अपने देश को और मजबूत बना सकते हैं। आइए बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के वीरों को नमन करते हुए एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने का संकल्प लें। अंग्रेजों, भारत छोड़ो इस आंदोलन का यही उद्देश्य है। हमें उन वीरों के त्याग और बलिदान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज हमारा कर्तव्य है कि हम मन लगाकर पढ़ाई करें, अनुशासन का पालन करें और अपने देश के कानूनों का सम्मान करें, और भारत को स्वच्छ, शिक्षित और समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दें।

बच्चों को बरसात का मौसम सभी को अच्छा लगता है। इस मौसम में ठंडी ठंडी हवा, रिमझिम बारिश और हरियाली मन को आनंदित कर देती है, लेकिन यही मौसम अपने साथ बीमारियां भी लेकर आता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बरसात के मौसम में बाहर का खुला और अस्वच्छ खाना खाने से बचना चाहिए। जानते हैं बच्चों, बरसात के मौसम में हवा में नमी अधिक होती है, जिससे भोजन में कीटाणु बहुत जल्दी पनप जाते हैं। सड़क के किनारे मिलने वाले खुले हुए खाद्य पदार्थों पर मक्खियां बैठ जाती हैं, जो कई तरह से रोग फैलाती हैं। ऐसा भोजन खाने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा साफ और ताजा भोजन ही करना चाहिए। खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोइए। साफ, उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए। कटे हुए फल, बासी भोजन और खुले में बिकने वाले चाट गोलगप्पे खाने से बचिए। हरी सब्जियां और मौसमी फल खाकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। बच्चों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी मन लगाकर पढ़ पाएंगे, खेल पाएंगे और अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। इसलिए आइए हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि बरसात के मौसम में बाहर का खुला भोजन बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, स्वच्छता का पालन करेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। स्वच्छता अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। याद रखिए बच्चों, स्वस्थ भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। यदि हर बच्चा स्वच्छता का ध्यान रखे तो हमारा विद्यालय, हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा देश सुंदर और स्वस्थ बन सकता है। तो आज से ही हम प्रण करें कि हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो भाई बच्चों, आइए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल संग। एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का उम्र केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम वेद प्रकाश पाठक। विधानमंडल के मानसून सत्र का कार्यवाही विपक्ष के हंगामा के बीच आज अनुपूरक बजट पारित करौले के साथ ही अनिश्चितकाल खातिर स्थगित कर दिया गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्र के दौरान विपक्ष के आचरण के शर्मनाक बतौले। वहां के विधानसभा के बाहरी मीडिया से बतियावत कहने की सदन में विपक्ष का व्यवहार नौजवान महिला आ विकास विरोधी रहल।
1: विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह का अध्यक्षता कैलिन। ए मौका पर वहां के मेधावी विद्यार्थियों के पदक बटली। अपने संबोधन में राज्यपाल कालीन की विकसित भारत के निर्माण में नौजवानों का भूमिका सबसे खास हो। वहां के विद्यार्थियों से आह्वान कैलिन कि वो अपने शिक्षा प्रतिभा कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। राज्यपाल बहने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होखब। लोकसभा आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामा के बीच बिना चर्चा के पारित कर दियालस।
2: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सर्वोच्च न्यायालय कहले हवे कि नौजवान छात्र प्रदर्शनकारियों के लेके प्रतिक्रिया दे समय अधिकारी लोगों के संयम बरते के चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कहलस कि हिंसा के रोके बदे कौनो तरह के हिंसक प्रतिक्रिया से हालात और यो बिगड़ जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अध्यक्षता वाली पीठ कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का मांग वाली याचिका पर सुनवाई करती टिप्पणी कैलस। याचिका में दिल्ली आदेश के ओरियो इलाकन में कांग्रेस जनता पार्टी की अगुवाई में भयल प्रदर्शन के दौरान भयल हिंसा बदे पार्टी के कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई का मांग कैल गेल रहल। ए हिंसा में पत्थरबाजी शामिल बा। अयोध्या को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर में राम दरबार खातिर लागू विशेष पास का व्यवस्था खत्म कर दिले हो। हमने अयोध्या प्रतिनिधि बतौले हमें कि अब श्रद्धालुओं के राम दरबार के दर्शन बदे अलग से पास बनवोले की जरूरत नहीं पड़ी। मेडिकल परामर्श समिति की ओर से नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहला फेरा का पंजीकरण 12 अगस्त तक ले तिजहरिया 3 बजे ले कल जाये। हालांकि शुल्क का भुगतान 12 अगस्त के संजा 6 बजे ले कल जा सकेला।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन

0: प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के साथ ही कई गो और यो जिलन में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। विधानमंडल
2: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी दे दे आज प्रसारित होने वाली शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि आठ बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा और कानून की बात, ये आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम 7:31 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे। हम और हमारा स्वास्थ्य, ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे शाम 7:05 पर। ग्राम जगत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे कलाकार हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन और ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार से। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। भूले बिसरे गीत हम आपको सुनाएंगे रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। सबरस, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। और रात्रि 10 कार्यक्रम होगा रसधारा। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका पुत्री फूलमती निवासी ग्राम टापुखाल थाना जुगैल जनपद सोनभद्र, ये दिनांक 5 मार्च 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, हुलिया गोरा रंग, एक हरा बदन, सामान्य चेहरा, पहनावा है गुलाबी सूट सलवार। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार किस्मतिया देवी पत्नी संजय कुमार निवासी ग्राम मझौली थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र, ये दिनांक 22 मार्च 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट लगभग, हुलिया सांवला रंग, लंबा चेहरा, एक हरा बदन, काले बाल, पहनावा हरे रंग की साड़ी और पैर में जूती। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: आपों के राम राम भोला बिया, पंचायती के डुगडुगी बजल। अब यह देखा का गठिया हुआ एकदम बिया खोला।
0: भैया देखा जिसमें मौसम जैसन हो हमें खेती किसानी एकदम करत रहल हूँ पंच भैया लोग, ऐसने में जो बाकी घास फूस से भी बड़ा बच उच करके रहे के होखाला।
1: अच्छा अच्छा।
0: क्यों हमें तरह तरह के जोन विषैले जानवर हों भैया।
1: हाँ भैया,
0: उन लोग से भी बड़ा क्षति होए की संभावना होला। और कहीं कहीं भी होला कि जिसे गढ़ा गुड़ी हो और चारों तरफ से घास हमें हो भैया, कहीं गलती से जोन बाकी पैर हमें न चल जाए, ये भी सावधानी बरते पड़ला भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हुआ भोला भैया। और जिस तरह से भैया देखा सावन के महीना चलते हुए और इसने भैया देखा पूरा एकदम क्षेत्र और पूरा अंचल हो अंचल का पूरा देश कहला एकदम भक्तिमय हो गए हुए। और हर तरह भैया देखा एकदम जोन बाकी बाबा भोलेनाथ के जोन बाकी जयकारा लगत हुए और सब लोग भी देखा कहीं ना कहीं भी देखा उनके दरबार में जाके अपन अर्जी लगावत हुए कि के तरह से हम लोग उनके भी जीवन और अच्छा तरह
0: चले। इसमें जोन बाकी परिवहन में भी और जो की रोड पर भी देखे हैं तो जोन बाकी बोलबम किनारा अक्सर देखल जा रहा हो गेरुआ वस्त्र धारण करके लोग और जोन बाकी कांवर लेकर के भी जा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन साथ साथ जोन इसमें खेती के जोन शुरुआत हुई हो भैया धान रोपनी वाला ये में भी बहुत किसान भाई लोग जोन बाकी पंच भैया लोग नहीं जा पाओ थे उनकी अगर उधर जाये तो इधर हमारे पछड़ जाये।
1: बिल्कुल।
0: तो निश्चित रूप से भैया अपनी अपन 3/13 कार्तिक वाला जोन बतावाला
1: हाँ
0: तो धान रोपनी की खातिर जोन बाकी ये अषाढ़ हो भैया ये जोन बाकी बढ़ चढ़ के लोन के करे के हो। साथ साथ बहुत सारे चीज ऐसा हो भैया मुरा हो भाई
1: का भैया
0: कि अगर जितना भी आज पद्धति बनल हो कथा कहानी परंपरा लोक की लोक कथा ये सब जोन बाकी बुराई से बचाव वाला भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके माध्यम से देखा जैसे एक कहा बड़ बुजुर्ग लोग सोत करके समवा के बतावे कि भैया एक कछुआ रहल एक खरगोश रहल है अब हमें जोन बाकी लगातार कछुआ जो है कि चलत रहल और खरगोश तेज से चल करके जोन बाकी रुक गई तो ओके जोन बाकी हार माने पड़ल और कछुआ निरंतर चल करके जो है जीत गिलक।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: बिल्कुल।
0: अगर निरंतर काम करे तो निश्चित रूप में हमें सफलता बा।
1: ये
0: तरीके से एक कहानी के माध्यम से अपन कर्मण्यता के जोन बाकी बरकरार रखे खातिर जोन बाकी सुझाव देवल जाला। यही तरीके माता पिता के कैसे सेवा करे से का फायदा श्रवण कुमार के का हालात ये तरीके श्रवण कुमार के उनके माता पिता के लेकर के और पुण्य करवा तो भैया जोन बाकी आप फलवा फुलवा और जहाँ जोन बाकी केहू के साथ अपराध करवा तब पीछे जेबा ये तरीके तरह तरह के कथा कहानी के माध्यम से भैया जोन बाकी समाज सुधार में भी एक बहुत बड़ा अहम भूमिका होखाला।
1: एकदम एकदम सही कथा भला भैया। और आज के परिवेश में भैया देखा जहाँ कथा कहानी पहले भैया देखा बाबा दादा नाना नानी लोग कहत रहन वही भैया देखा आज एकदम बिल्कुल परिवेश बदल गए हुए।
0: बिल्कुल।
1: आज भैया देखा ये सब कथा कहानी के जोन चित्रण बा या दिखावल जात बा भैया देखा आप टीवी के कहला रेडियो कहला मोबाइल कहला या तो भैया देखा कहीं कहीं भैया देखा नुक्कड़ नाटक के भी माध्यम से जोन बाकी लोगन के बतावल जाला कि जोन भी सामाजिक कुरीतियां हुए और जोन भी लोग हुवन अगर गलत दिशा में जात हुवन तो उनके क्षेत्र से नुकसान हो सकेला और क्षेत्र से भी देखा लोगन के जागरूक करके भी देखा उनकर पूरा स्थिति के बदले के भी देखा काम कल जाते हुए तो निश्चित रूप से आज के जोन परिवेश बा बदल गेल बा। लेकिन सार भी देखा वही हुए और ओकर उद्देश्य भी वही हुए कि भी देखा के तरह से लोग भी देखा अच्छा रास्ता पे जाके आगे बढ़े।
0: अच्छा थोड़ा सा इस समय में यो अंतर आ जाता हो भैया कि पहले दिन भर में मान लो एक कथा या एक नाटक एक कहानी होके तो ओके बारे में दिन भर चर्चा होते रहत एक दूसरे से लोग बांटे और वो ध्यान में रहते रहे।
1: बिल्कुल,
0: आज
1: बिल्कुल।
0: लगातार लगातार जो जैसे मोबाइल के माध्यम से हम लोग एक थोड़ा सा देर तक देखल गए तब से तुरंत दूसरका बदल गए तीसरका बदल गए अब इसने बहुत कहा बा कि जो बाकी दसन ठे देख ले और फिर एको याद
1: एक के भी जीवन में उतारल नहीं जाता
0: नहीं रहा। बिल्कुल भैया जोन लोक कथा रहल और आज भी कहानी के माध्यम से और नुक्कड़ के माध्यम से जोन हो ज्यादा सकारात्मक वाहन
1: बिल्कुल
0: और निश्चित रूप से जुड़ कर ऐसे जुड़ करके हम लोग के लाभ ले
1: एकदम सही कथ हुआ भैया। और आज भेंट वार्ता क्रम में भी विलुप्त होती हमारी लोक कथाएं एक बारे में भोलानाथ मिश्र जो उनके वरिष्ठ पत्रकार हुआ अपन सुनील कुमार तिवारी भैया बातचीत कैले हुआ और न हो तो भैया देखा सुनल जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल सुना भैया
2: भैया लोग देखा है हम लोग गांव का रहे वाला है और जौन अपन खास तौर से सोनभद्र वो आदिवासी गिरवासी वनवासी भैया लोगन का अंचल है और यहाँ तमाम ऐसा लोक कथा है जौने के बारे में हम लोगन नहीं जानी आज धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं। कुछ लोक कथा ऐसा भी है जौन विलुप्त भी हो गए हैं। आज हमार संपर्क हो गल वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ मिश्र भैया से। आपके लोक कथा के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है और आप हर समय ऊपर अध्ययन मनन और चिंतन भी करत रहना। आज उनसे ही ये लोक कथा के बारे में जानल जाए तो भैया राम राम।
3: राम राम भैया।
2: ये बताओ कि जौन अपने अंचल का लोक कथा रहल वो धीरे धीरे विलुप्त होता ऐसा ना एक लोक कथा या विधा रहल दृष्टिकोण ये भी धीरे धीरे कहीं न कहीं विलुप्त हो गल बा। अपन पंच भैया लोग ओकरे बारे में जानत भी नहीं तो अपने पंच भैया लोगन के दृष्टिकोण के बारे में आप का बतावल चाहिए।
3: जी हाँ, दृष्टिकोण को बताने के पहले हम अपने जो शहरी क्षेत्र के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कुछ संकेत कर दें फिर दृष्टिकोण क्या है बता रहे हैं।
2: जी जी जी।
3: जिस कला का नाम लेकर जी रहे हो कुछ पता भी है इसे किसने रची है।
2: क्या बात है।
3: जिस अटारी पर खड़े इतरा रहे हो
2: जी
3: उसे कई गुमनाम लोगों ने रची है।
2: जी।
3: एक तो आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ रामलीला की विधा है चाहे वो बड़का गांव तरावा की हो चाहे भवानी गांव की हो सजौर मझगांव की हो किचार की हो
2: जी, जी।
3: कहीं की भी हो उसके जितने संवाद हैं जितने लावणी छंद हैं
2: जी
3: जितने प्रसंग हैं जो किए हैं सवैया है छंद है उसको किसने रची है वो कौन कवि है
2: जी।
3: ये कोई नहीं जानता ये तो बात अलग हो गई।
2: जी।
3: हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध विधा दृष्टिकोट जिसको हमारे इस दक्षिणांचल में बिस्कुट के नाम से जानते हैं वह एकदम विलुप्त हो चुका है।
2: जी जी।
3: मैं आपको उदाहरण के रूप में प्रश्न पूछ रहा हूँ दृष्टिकोट कहते थे लोग इसको यहाँ दृष्टिकोट को इसमें प्रश्न होता था और प्रश्न का जवाब सामने वाला देता था।
2: जी जी।
3: मैं प्रश्न कर रहा हूँ पर पाकल पीपर पाकल और पकल मन गुहिया
2: जी
3: घर का नार दुलार के पूछे तू पिया मरबा कहिया चल पासा आठ इम्मा का लागल बा काट। ये प्रश्न है।
2: जी जी।
3: इस प्रश्न का उत्तर देते थे लोग। इस प्रश्न का उत्तर भी है लेकिन हम दो एक दृष्टिकोण आपको और सुना देते हैं।
2: जी जी जी।
3: भला भयो सो पी मरे
2: जी
3: नहीं होती हूँ मैं राण घर का सखियां ठट्ठा मरती पुरिस लगावट दान
2: जी।
3: चल पासा सोर करनी हो तो सोर कुबर जाए। ये प्रश्न था।
2: जी जी।
3: और फिर उसका उत्तर मिलना वाजिब था।
2: जी।
3: तीसरा दृष्टिकोण में दे रहा हूँ बर रहा सो मर गया
2: जी
3: कन्या भाई यही बात घर का सखिया मंगल गावे रोवत चली बरात चल पासा बारह इमे बारम्बार तोयबा।
2: जी।
3: तो कहें तो इसका हम उत्तर भी बता दें।
2: बिल्कुल पंच भैया लोग उत्तर जाने बदे भी उत्सुक हुई है तो आप जरूर उत्तर बताओ।
3: ये प्रश्न है एक किसान और उसकी नई पत्नी विवाह के बाद वह गर्भवती होती है
2: जी
3: तो जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको खट्टा मिठा खाने के लिए

0: उसको तीतर बटेर खाने की इच्छा हुई
1: जी जी,
0: तो अपने पक्ष से कहती है
1: जी
0: कि हमको तीतर बटेर खिला दीजिए। तो वह दो तीन महीने की उस समय गर्भ होती थी और तीतर और बटेर मिलने का एक निश्चित समय सिवान में रहता है।
1: जी जी,
0: उसका पति हल जोतता था, उसने कहा कि अभी नहीं, जब बर और पीपर
1: जी
0: पक जाएगा उस समय तीतर आएंगे
1: जी,
0: तो मैं तीतर का शिकार करूंगा और तुमको खिलाऊंगा। तो वही जब समय आ गया तो पूछती है वो कि बर पक गया, पीपर पक गया और मनगोइया का भी अब विलुप्त हो गया। जंगल में मनगोइया मिलती है
1: जी जी।
0: उसका गोदा होता है, खाने में बड़ा मीठा। तो कहती है बर पाकल, पीपर पाकल और पकल मनगोइया, ये पति जी बर भी पक गया, पीपल का पेड़ भी जो फल लगता है पक गया, मनगोइया पक गई
1: जी जी।
0: खरखर नारी दुलार के पूछे, दुलार करके पूछती है अपने पति से कि तू पिया मरबा कहिया है, पिया अब कहिया मरबा
1: जी जी,
0: माने ओके कम लोग भाषा यहाँ की है मरबा
1: जी जी जी,
0: कि तीतर कम मरबा। ये प्रश्न है, सुनने में लगता है कि अपने पति को मरने के लिए कह रही है
1: जी।
0: अब देखिये कितने छेद विस्फोट थे।
1: अब
0: दूसरा है कि भला भयोर से पी मरे
1: जी,
0: नहीं होती हूँ मैं राण, खड़का सखिया ठट्ठा मरती पुलिस लगावट डांड, चल पासा सोर करनी हो तो सोर कुबर जाए। माने करनी नहीं थी जो आप शब्दों में देख रहे हैं
1: जी जी।
0: वो क्या रहा है कि एक पति हल जोत करके रात में घर आता है
1: जी,
0: हाथ पैर धोता है, गाय गोरु को सरिया बसूल में जहाँ भी बांधना है बांधता है। जब वो आता है तो अपने पति को वो दूध पीने के लिए पहले जो है दूध नीचे गड्ढा खोद करके
1: जी जी,
0: और उसमें घरिया में गुल्ली में दूध बैठाते थे, ऊपर से ढक्कन एक मिट्टी का इसमें छेद बना होता था रख देते थे,
1: धुआं निकले बदे भैया,
0: धुआं निकलने के लिए। तो वह गई, उसको हटा दी, दूध बहुत गर्म था, सोची कि कुछ देर के बाद आएंगे तब दूध लेकर पति को देंगे
1: जी जी।
0: इतने में आधे घंटे पौन घंटे का समय लग गया उसको
1: जी।
0: फिर जब रात में वो दूध देने के लिए आती है और दूध निकालती है कटोरे में तो देखती है उसमें काले रंग का भुजंग सांप मर गया है
1: जी,
0: मरा पड़ा है। तो वही कहती है कि भला भयो, बहुत बढ़िया भल, जो पी मरे, जो तू पी कर ही में मर गया।
1: अच्छा,
0: नहीं हो तू मैं रहा है, अगर तू पी कर ये सांप हरी सांप का, अगर तू दूध पी करके गर्म इसी में गिर करके न मरे होते
1: जी,
0: और मैं यह आपको न देखती और यह दूध अपने पति को पिला देती तो मैं राण हो जाती।
1: बिल्कुल,
0: घर का सखिया ठट्ठा मारती, जो घर की महिलाएं हैं वो ठट्ठा मारती, हम लोग देखिए अपने पति को ही मारती। अब पुलिस लगावट डाल, अपने जम के जेल भेजा, इसीलिए इसका चल पासा सोरा करनी हो तो सोर खुबर जाए, तो करनी उसकी थी नहीं। तो गांव में कहते हैं कि फनवा के सोर खुबर जाए, माने सब कुछ खत्म हो जाए
1: जी जी जी।
0: यह दृष्टकूट है
1: जी।
0: और बर रहा सो मर गया, कन्या भई अही बात। अब देखिए शब्दों पर ध्यान, बर रहा सो मर गया
1: जी जी,
0: अब कन्या अही बात ही कैसे हो गई
1: जी।
0: घर का सखिया मंगल गाँव है, कोई मर जाएगा तो कोई मंगल गाएगा मंगल गीत, लेकिन नहीं, यहाँ मंगल गा रहे हैं। रोवत चली बरात, बरात रोते हुए चल दी
1: जी।
0: हमारे यहाँ राम कथा 5000 वर्ष पहले आ गई थी
1: जी,
0: रामनगर के साथ ही हमारे यहाँ राम कथा आ गई थी
1: जी।
0: चनाइन मान गुफा में भगवान सरकार राघवेंद्र, जगत माता, जगत जननी सबका एक दृश्य है जो कलेक्ट्रेट के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा भित्ति चित्र के रूप में
1: जी।
0: ये राम कथा का प्रसंग है दृष्टकूट में
1: जी।
0: बर रहा, बर था राजा जनक जी का
1: जी।
0: कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो बर रहा सो मर गया
1: जी जी,
0: जो बर था धनुष वह तो टूट गया मर गया
1: जी जी।
0: कन्या भाई यही बात, सीता जी अहिवाती हो गई
1: जी।
0: घर का सखिया मंगल गाँव में, तो जनकपुरी में जब सरकार राघवेंद्र के गले में जयमाल डाल दी तो जितनी भी सखियां थी जनकपुर की मंगल गाने लगी
1: जी।
0: और रोवत चली बरात, तो धनुष तोड़ने के लिए आए थे लोग भूप सहस दस एक ही बारह लगे उठावन टने नटारा, वो रोते हुए चल दिए। रोवत चली बरात,

0: जी
1: चल पासा तेरा। तो इसमें बर रहा सो मर गया, कन्या भाई यही बात, घर का सखिया मंगल कामा रोवत चली बरात, कह तो कुछ और रहा है शब्द,
0: जी जी
1: लेकिन भाव कुछ और निकल रहे हैं इसके। इस तरह के अनेक दृष्टिकूट हमारे यहाँ अब विलुप्त तो हो रहे हैं,
0: जी जी
1: और इसको सहेजने की जरूरत है, तलाश करने की जरूरत है। अब कितने लोग बचे हैं, कितने लोग नहीं बचे हैं, ये तो हम नहीं जानते। एक इसी में समस्या पूर्ति पहले हुआ करती थी।
0: जी
1: लोग पूछते थे कि वह कौन सा अवसर है
0: जी
1: कि जब घराती बराती दोनों एक साथ ठहाका लगाए।
0: जी जी
1: तो वह प्रसंग में आता है कि जब सरकार राघवेंद्र का विवाह हो रहा था, तो विवाह के समय में स्त्रियां यहाँ गाली गा कर दी जाती है।
0: जी जी
1: माई के गारी, बहनिया के गारी, फुआ के कैसन गारी जी बिहाजी।
0: जी जी
1: तो लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित थे। लक्ष्मण जी ने राम की तरफ देखा, बड़े भाई को, कि जो गारी, हमारे यहाँ गारी है, वो गाली नहीं है, गारी
0: जी, गारी
1: गारी जो गारी गा रही है लोग, माई को गाली दे रही है, बहन को गाली दे रही है, लेकिन हमारे फुआ को गाली क्यों दे रही है लोग।
0: जी
1: तो सरकार राघवेंद्र भी ऊपर पर कोटे पर देखे, जहाँ से स्त्रियां गारी गा रही थी, जेवई बैठे तीनों लोगों को ठाकुर, अद्वैत सखी सब गारी जी बिहाजी। तो जब भगवान राम देखते हैं तो सब चकबका गयी, अचकचा गयी। सरकार राघवेंद्र देख रहे हैं तो भूल गयी अवधेश के नाम को, अध्ययन लगी मिथिलेश को गारी।
0: जी
1: अवधेश का नाम भूल गया सबको, भूल गए अवधेश के नाम को, देन लगी मिथिलेश उगारी संक, वो चकबका करके, चकबका के क्या उसका शब्द है, उसके लिए अचकचा कर, अचकचा गई लड़कियां और जितनी भी वो सब गाने वाली थी, अचकचा गई और अचकचा करके भूल गई अवधेश के नाम को, देन लगी मिथिलेश उगारी। तो जो घराती थे उन्होंने कहा देखिए ये सब कैसी पागल हो गई हैं, गाली तो चाहिए बराती क्या और गाली दे रही हम लोगों को, और बराती इसलिए हंसे कि ठीक बड़ा अच्छा हुआ घराती गाली पा रहे हैं।
0: तो
1: यही वो प्रसंग था
0: जी जी।
1: जो भूल गए अवधेश के नाम को, देने लगी मिथिलेश को गाली। इस तरह की परंपराएं हमारे यहाँ अब तिवारी जी समाप्त हो रही हैं।
0: जी जी।
1: और नटुआ नृत्य के बारे में आप जानते ही हैं कि नटुआ नृत्य 300 वर्ष पहले यह आदिवासियों का नृत्य हुआ करता था। उसके बाद 200 वर्ष के पहले जो अनुसूचित जाति हमारे यहाँ की है
0: जी जी,
1: उनका नटुआ हो गया। नटुआ को धुर लुटवा भी कहते हैं।
0: जी जी जी जी।
1: कहवा जन्म न स्त्री महादेव, कहवा हो कन्हैया, इसकी शुरुआत सुमिरनी इसी से होती है।
0: जी जी जी।
1: और फिर एक नर्तक, माने पुरुष ही नर्तक बनता है, कुल इसमें 7 कलाकार होते हैं। वो भी गाता है कि राधा मुरलिया ले लें चुराई जी, अब हम कैसे हो माई, राधा मुरलिया ले लें चुराई। इस प्रकार से यह नटुआ नृत्य भी अब हमारे यहाँ विलुप्त हो रहा है, अब आप कहीं नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात आप कहत हुआ, और आज आपसे मुलाकात भइल और इतना बढ़िया आप दृष्टकूट के बारे में अपने पंच भैया लोगन के जानकारी देलें, एकरे बदे बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात में फिर हम लोगन अपने पंच भैया लोगन के सामने जौन लोक नृत्य नटुआ बा एकरे बारे में भी जानल जाई। आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: करेले न है।
1: बिल्कुल, जिला जवार के बखान करत हुए भैया।
0: बिल्कुल, और भैया देखा हम लोगन के भी अपने जिला जवार में भैया देखा खेती पाती के काम होखत हुए, और इसने भैया देखा हम लोगन के जोन भी रासायनिक खेती हुए, चाहे भैया देखा रासायनिक भैया देखा चाहे दवा होके या भैया देखा
1: खाद हो
0: खाद होके, हम लोगन के निश्चित रूप से भैया देखा आज के परिवेश के देखते हुए भैया देखा एकदम जोन बाकी एक छोड़ने की जरूरत हुए,
1: बिल्कुल,
0: और प्राकृतिक खेती के और मुड़ करके भैया देखा हम लोगन के खेती के आगे बढ़ावे की जरूरत हुए। और जे तरह से भैया देखा प्राकृतिक खेती के बात आवेला तो भैया देखा माटी पानी और जोन ब्यार बा जब हम लोगन के भैया देखा सही रही तभी जाके भैया देखा हम लोगन के जोन भी खेती बा वो भी जोन बाकी बढ़िया रही और अनाज के उत्पादन खाए योग्य हो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो यही विषय पे आज बातचीत भी हो, शिवशरण भाई जी से मुलाकात हो गई रहे।
0: अच्छा अच्छा
1: प्रगतिशील किसान हो और वनवासी सेवा आश्रम में आप सेवा भी देवल,
0: अच्छा
1: एक तरह के वैज्ञानिक भी हो भैया,
0: अच्छा
1: तो
0: भैया
1: इनसे मुलाकात हुई और बात बात कही हुई लो, कहा तो खोली पोट्री
0: एकदम भैया पोट्री खोला बतावा पूछा का का बतेले हुआ ना, और हम लोग गठिया है भैया।
2: किसान भाइयों बहनों, अक्सर हम लोग सुनना करते हैं कि खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार, जैविक खेती कीजिए होए उपज भरमार। तो निश्चित रूप से जैविक खेती का कितना बड़ा मांग है और जैविक खेती से किस तरीके खेत का जीवांश उर्वरा शक्ति सदैव बना रहता है, तो इससे हम लोग को तकनीक की जानकारी करना सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि किस तरीके हम लोग करें कि जो है कि अच्छा खासा हम लोग का जीवांश की मात्रा भी बनी रहे और खेत में उपजाऊपन भी रहे। परत दर परत जो कठोर भूमि होते जा रहा है कहीं न कहीं से रासायनिक खाद और दवा का ही देन है, इससे हम लोग कैसे बचें। आज इस विषय को जानने के लिए कि जैविक खेती कितना लाभप्रद है शरीर के लिए, मिट्टी के लिए, पर्यावरण के लिए, तो सोनभद्र जनपद अंतर्गत मेयरपुर ब्लॉक के वनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर में कृषि विभाग की देख रेख करते हैं श्री शिवशरण सिंह जी, आपसे मुलाकात हो रही है। आप का जहाँ तक जानकारी है कि आप यहीं वनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर में ही पढ़ाई लिखाई भी किए और यहाँ से तकनीकी सीख करके यहीं पर सेवा भी दे रहे हैं, क्या कुछ अनुभव है जैविक खेती करने का और क्यों आवश्यक है, इस विषय पर बातचीत होगी। तो शिवशरण सिंह जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार सर।
2: तो इस उद्देश्य भी कि आज लोग अधिक से अधिक अनाज उत्पादन करने के उद्देश्य से ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग और जो है कि रासायनिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें जो अभी तक जानकारी मिल रही है कई जगह वार्तालाप के दरमियान ये सुनने को मिल रहा है ये नुकसानदायक है, जैविक खेती कैसे लाभदायक है थोड़ा हम लोग को सुझाव दें।
3: असल में मित्रों, हम खेती करते हैं खाने के लिए
2: जी,
3: और खाने का प्रभाव मेरे शरीर से मेरे जीवन से है, और अभी वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि जो है हम केवल 2 या 3 खाद ही देते हैं, जबकि पोषक तत्व करीब 16 पोषक तत्व फसलों को चाहिए
2: जी।
3: और वो जो पोषक तत्व यदि हमें दाने में कम पड़ गया तो हमारे शरीर में भी वो कम पड़ जाएगा और उससे तमाम तरह की हमारे शरीर में विकृतियाँ बीमारियाँ आ रही हैं, और इसलिए पिछले साल 10-15 सालों में तो भयावह स्थिति है कि गाँव में भी इस तरह की बीमारियां भी आ रही हैं
2: जी।
3: और इसका कारण यही है कि फसलों को 2-3 ही खादों में हम दे पाते हैं और बाकी नहीं दे पाते हैं, और वो अनाज में हो रहा है
2: जी।
3: तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, पर्यावरण की दृष्टि से देखें, तो वनवासी सेवा आश्रम पिछले 2008 से ही जो है मतलब प्राकृतिक खेती हम लोग कर रहे हैं
2: जी जी,
3: और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें उत्पादन और कीट नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इसमें हम पूरी तरह से जो है कीट नियंत्रण कर लेते हैं प्राकृतिक रूप से
2: जी,
3: और खाद का भी पूरा जितना NPK और जितने भी तत्व चाहिए उसमें वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, और मरे जानवर से भी हम लोग जो है वो खाद बनाते हैं
2: जी जी।
3: तो इस तरह से जो है एक ग्लिसीडिया का पेड़ होता है उससे भी हम पत्तों को सड़ा करके उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं।
2: हाँ।
3: और
2: अब चूंकि गांव में गांव के लोग भी सुन रहे हैं
3: जी,
2: और चूंकि उन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक लाभान्वित भी हो सकते हैं
3: जी,
2: तो वो लोग चूंकि 2-4 मवेशी सब लोग रखा है
3: बिल्कुल,
2: आज जंगल थोड़ा कम हो गए हैं जिसके वजह से अधिक पशु लोग नहीं रख पा रहा है, तो कम पशु के गोबर से कैसे हम लोग खाद निर्माण कर सकते हैं जो अधिक से अधिक खेतों में डाला जा सके सर?
3: जी, एक पशु से मेरा मैं बराबर इधर 15 सालों से कर रहा हूँ, एक पशु से जो है हम करीब 20 एकड़ की खेती कर लेते हैं
2: जी।
3: और देखें कि यदि जैसे अभी समय धान का रोपाई चल रहा है और भी फसल लग रहे हैं, सब्जी लग रही है, तो हम घन जीवामृत सबसे पहले क्या करते हैं कि 100 किलो गोबर से घन जीवामृत बनाते हैं।
2: अच्छा।
3: 100 किलो गोबर और 2 किलो गुड़, 2 किलो चूनी मिला करके वो 6 दिन में खाद बन जाता है।
2: अच्छा।
3: और 1 एकड़ के लिए मात्र 100 किलो गोबर से ही जो
2: तो
3: है
2: कैसे बनाएंगे उसको?
3: उसको जो है मतलब 100 किलो गोबर ले लेंगे, 2 किलो गुड़ डालेंगे और 2 किलो चूनी मिलाकर फेंट देंगे।
2: किस चीज में?
3: एक मिला दिनों को गोबर गुड़
2: मतलब
3: और चूनी
2: ऐसे है जमीन में,
3: जमीन में करके छाया में, अच्छा, छाया में धूप अच्छा, अच्छा, में ना हो
2: जी
3: जो है, और उसको 2 दिन के लिए ढक करके रख देंगे।
2: अच्छा।
3: किसी से? बोरे से, पत्ते से,
2: अच्छा,
3: जो है डाली जो आपके पास जो भी घास हो जो है वो 2 दिन के बाद उसको 2-3 kg का गोला बना देंगे।
2: अच्छा।
3: और फिर 2 दिन के बाद उन गोलों को थोड़ा सा एक मोटा डंडा ले लीजिए,
2: हाँ?
3: 2 फीट का, उसमें उसको फोड़ दीजिए।
2: अच्छा।
3: और 2 दिन के बाद वो खाद तैयार हो गई।
2: अच्छा।
3: वो घन जीवामृत को इसको कहते हैं।
2: जी, जी जी जी।
3: और जैसे आपने अभी धान के समय ये 100 किलो गोबर में कर दिया,
2: हाँ?
3: और फिर जो है हम जो है जीवामृत बनाते हैं
2: जी,
3: तो 200 लीटर पानी में जो है वो 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र
2: जी,
3: और 1 किलो गुड़, 1 किलो चून, ये 2 दिन में खाद बन जाएगा।
2: जी जी जी, जी।
3: तो इसको जो है फसल में आप 3-4 बार, जैसे अभी धान का रोपाई 15 दिन पहले भी किसानों का हो गया है, तो अभी आप इसको कर सकते हैं,
2: तो
3: डाल
2: इसको,
3: सकते हैं।
2: इसको डालें कैसे?
3: इसको तो या तो जैसे आप पानी दे रहे हैं तो पानी साथ बहवा दीजिए।
2: अच्छा।
3: नहीं तो उसको छान करके स्प्रे मशीन से,
2: अच्छा,
3: उसको आप इसको दे दीजिए
2: तो अच्छा लाभ,
3: अच्छा पूरा लाभ होगा पूरा पूरा।
2: चूंकि आज देखिए शिवशरण जी, ये देखा जा रहा है कि खेतों में केचुआ के संख्या कम दिखते हैं
3: जी,
2: ना के बराबर
3: बिल्कुल,
2: और उसमें जैसे पहले जो पेट के अमृत कहा जाता था, पेहटा इत्यादि
3: जी जी,
2: वो भी जो है कि आज बहुत कम दिखते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रासायनिक खाद का इसका कुछ प्रकोप है?
3: नहीं, वो रासायनिक का तो है ही है प्रकोप, और इससे बड़ा कि हमारा जो जीवांश कार्बन जो है वो बहुत कम हो गया
2: जी,
3: और जीवांश कार्बन जब कम हो गया तो हमारे और भी जैसे कि शरीर में यदि आपको किसी तत्व की कमी होगी, वैसे फसलों में भी
2: जी,
3: तो बहुत सारे जो है बीमारियां, तो वो कम इन जो पोषक तत्व तो कम है
2: जी,
3: जैसे जिंक की कमी आप देखेंगे, अभी धान का आप लगा रहे हैं और यदि जिंक की कमी है तो खैरा रोग कहते हैं कि खैरा रोग लग गया
2: जी,
3: वो
2: जी, जी।
3: तो यदि हम पहले से सचेत हो जाएं
2: जी,
3: तो जिंक की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से जो है वो केचुआ खाद भी आप बना सकते हैं, केचुआ खाद बहुत आसान बनाना है
2: जी, जी।
3: जो है करीब 80% से घास और 20% गोबर
2: जी,
3: और ये 60 दिन में केचुआ खाद बन जाता है,
2: तैयार हो जाएगा।
3: हाँ, तो इससे भी जो है मतलब, और यहाँ के मेढ़ों पर बहुत घास है, तो जो आप सब्जी लगाते हैं तो उसको प्लास्टिक मल्चिंग मत करिए।
2: अच्छा।
3: उसको जो है घास का मल्चिंग करिए
2: जी जी,
3: तो
2: जी,
3: उसमें देखेंगे उसमें केचुआ पूरा एकदम जमीन में आ जाएंगे।
2: हाँ,
3: और
2: हाँ,
3: उस पर
2: हाँ,
3: जैसे बरसात में भी आप देखेंगे हमारी 1 एकड़ भी जमीन जो है लौकी कुम्हड़ा नेनुआ वो जमीन पर ही है, मल्चिंग किया
2: जी, जी,
3: तो जो फल लगा है वो सड़ेगा नहीं,
2: हाँ,
3: पैसे करेंगे तो मिट्टी में तो आजकल फल सड़ जाएगा
2: जी, जी, जी,
3: तो खर्चा भी आपका कम हुआ,
2: क्योंकि
3: ऊपर जब हम हेज बनाते हैं, ऊपर जो हम झोपड़ी बनाते हैं तो पैसा लगता है उसमें
2: जी,
3: जो है
2: जी, जी।
3: और उसमें जो घास का भी मेढ़ों का भी सफाई हो गया,
2: हाँ, हाँ।
3: और आपने बिछा दिया तो 6 महीने में घास सड़ के अपने आप खाद हो जाएगा, और हम हरी खाद हो जाएगा, और मल्चिंग भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मतलब आप कर सकते हैं।
2: जैसे घन जीवामृत की बात आपने किया, उसको जो है कि इसमें सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं?
3: सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप हवा में जो नाइट्रोजन, देखिए प्रकृति ने हमको सब दिया है
2: जी,
3: यदि हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 120 किलो नाइट्रोजन चाहिए, धान को गेहूं को मक्का को इस तरह जो फसलें हैं 120 किलो
2: जी,
3: और 1 हेक्टेयर में जो हवा में नाइट्रोजन है 70,000 टन है, 70,000 टन है 1 हेक्टेयर में, हमें उनको कैसे लेना है? तो इसमें गोबर में क्या है, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं।
2: अच्छा अच्छा
3: जी। उन बैक्टीरियों को हम गोबर और गुड़ जो है, और उसमें जो है मतलब हम लोग चूनी कहते हैं
2: जी, जी,
3: ना चूनी,
2: हाँ, हाँ।
3: उससे उन बैक्टीरियों की मात्रा बहुत ज्यादा 6 गुना हम बढ़ा देते हैं।
2: अच्छा, मतलब खींचता है, खींच, आकर्षित,
3: हाँ, उनकी जो है परिवार बढ़ जाता है जब उनको देते हैं गुड़ देते हैं चूनी देते हैं
2: जी, जी, जी,
3: तो इनका 6 जैसे 3 करोड़ थे तो 18 करोड़ बैक्टीरिया हो गए 6 दिन में छह दिन में देखिए हमने बनाया, जैसे प्रक्रिया बताया आपको,
4: बिल्कुल,
3: तो ये बैक्टीरिया हवा के नाइट्रोजन लेंगे, आप फास्फोरस जो है जमीन में है उस जमीन को पौधों को देंगे
4: जी,
3: तो ये बैक्टीरिया देंगे अपना काम करेंगे।
4: बिल्कुल।

0: हाँ
1: हाँ, तो ये जो है कि आज इसका आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जैविक खाद का, और जो है
0: ये
1: कि
0: इसलिए पड़ रही है
1: जी
0: क्योंकि जैसे हमने आपसे कहा कि हम जो भी उत्पादन करते हैं खेती में, हम
1: जी
0: सीधे खाना खाते हैं, उसका हमारे
1: जी
0: शरीर पर प्रभाव पड़ता है।
1: जी
0: और उसमें यदि हम देखें तो जो आप यूरिया देते हैं, तो आप जो है वो 40% ही पौधा लेता है, 60% लीच होकर के जमीन में चल जाता है, और नाइट्रेट के रूप में हमारे पीने वाला पानी में आ जाता है, उससे हमारी पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाती है।
1: जी।
0: तो हम तो खाना पैदा कर रहे हैं, खाने के लिए ही कर रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: और उसको खाने से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, तो
1: जी
0: वो पद्धति अच्छी नहीं है।
1: जी जी
0: इसलिए आज का समय है, और खुद आप देख लीजिए गांव में किस तरह से बीमारी पड़े, इसका कारण है कि एक तो जो है वो पेस्टिसाइड
1: जी
0: जो
1: जी
0: है वो कीड़ों को मारने के लिए भी आप देखेंगे बहुत तरीका, जो फल छेदक है, तना छेदक
1: जी
0: है,
1: जी
0: यदि
1: जी
0: हम उसके कंट्रोल के लिए बात करें तो आप एक डब 20 लीटर का डब्बा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा छेद करके उसमें पानी भर दीजिए, और ये 1 घंटे गोधूली के बेला में ही स्टेम बोरर, जिसको फल छेदक तना छेदक बोलते हैं,
1: अच्छा जी
0: हाँ, वो नुकसान करते हैं,
1: हाँ
0: वो लाइट की तरफ बड़ा प्रभावित होते हैं।
1: जी
0: 1 घंटे आप एक टॉर्च लगा दीजिए, एक बल्ब घर के पास नजदीक हो तो बल्ब लगा दीजिए, और उसमें आप खुद देखिए, आप अनुभव है कि जहाँ लाइट जलता है बरसात में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: कीड़े
1: जी
0: आते हैं,
1: कीड़े आते
0: तो वो
1: हैं
0: कीड़े आते हैं वो मर जाएंगे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें आप देखिए आपका बहुत पैसा भी नहीं लगा,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: देखिए वो उसमें आपने कोई रासायनिक नहीं
1: मतलब
0: दिया।
1: युक्ति अपनाने की जरूरत
0: हाँ,
1: है।
0: उसी तरह से जो उड़ने वाले कीड़े हैं वो पीला चीज को बहुत आकर्षित करते हैं,
1: जी जी
0: होते
1: जी
0: हैं, तो हमने देखे हमारे खेत में, देखेंगे सब्जी में पीले पीले बोर्ड जो है हमने लगा रखा, और पीला वाला ग्रीस उसमें चिपका दिया है,
1: जी
0: तो उसमें जब वो आकर्षित होते हैं, उसमें चिप जाते हैं, तो उसमें पीला ग्रीस में चिपक के
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: मर
1: हाँ
0: जाते हैं।
1: अच्छा
0: तो इस
1: अच्छा
0: तरह से वो 10 पत्ती, यहाँ पर देखिए सोनभद्र में जड़ी बूटी वाला एरिया है,
1: जी
0: ऐसे पत्ते 10 पत्ते काट लीजिए कीटनाशक के लिए, जो लेंटाना है, बेहाया है, धतूरा है, जो है पलास है,
1: जी
0: इस तरह से गाजर घास है फूलने से पहले वाला,
1: हाँ।
0: अब आकाश नीम है,
1: अच्छा, जो गाजर घास हम लोग जो उसको बहुत शत्रु
0: हाँ,
1: मानते हैं,
0: पार्थेनी, बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल,
1: उसका मतलब
0: उसका
1: अगर
0: भी
1: थोड़ा
0: बहुत
1: तकनीकी
0: बिल्कुल,
1: ज्ञान
0: फूलने से
1: है।
0: पहले, फूलने से
1: हाँ,
0: पहले,
1: फूलने से
0: फूलने
1: पहले।
0: से पहले,
1: जी।
0: तो इस तरह से आप 10 पत्ती का वो 10 दिन उस पत्ती को सड़ा दीजिए, और उससे जो है कीट नियंत्रण बहुत बढ़िया होता है।
1: अच्छे, निश्चित रूप से बिल्कुल प्रसिद्ध है यहाँ तक, चाहे जवन फसल आप जानना चाहें। अभी तो हम लोग मोटे अनाजों के बारे में बात नहीं किए, लेकिन फिर बातचीत की जाएगी, और निश्चित रूप से लाभ लेने की ज़रूरत है जैविक खेती के माध्यम से। इतने अच्छे जानकारी के लिए शिवशरण सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है, प्रणाम
1: बहुत
0: भैया।
1: बहुत
0: देखा हमरे
1: धन्यवाद।
0: आप
1: हाँ भैया, देखा मुराओ भाई आपो के, और ये
0: बिल्कुल
1: सबसे महत्वपूर्ण बात की देखा, हम लोग के पाती बाँचे के भी बखत आ गया।
0: एकदम भैया, दुद्धी से हुए अजय कुशवाहा भैया बिजले हुए ना, और कुंतल में हुए भैया आलू 1200 से 1500 रुपये, 1100 रुपया कुंतल, और प्याज भैया 3000 से 3200 रुपया, टमाटर 2500 से 2800 रुपया कुंतल, लहसुन 10000 से 11000 रुपया कुंतल, अदरक 9000 से 10000, बैंगन लंबा वाला 1000 से 12000 रुपया कुंतल, गोला वाला 1800 से भैया देखा जो बाकी 2000 रुपया कुंतल, लौकी 1200 से 1400 रुपया कुंतल, नेनुआ 800 से 1000 रुपया कुंतल, करेला 2500 से 2700 रुपया कुंतल, बोरा रहले 1200 से 1500, और भिंडी रहले 600 से 700 रुपया, पालक 3000 से 3500, और मूली रहले 1500 से 2000, धनिया 15000 से 16000, और मरचा रहले भैया देखा 5000 से 6000 रुपया कुंतल, कटहल 800 से 1000, परवल 2000 से 3000 रुपया कुंतल, और भैया देखा नींबू रहले भैया देखा 150 से 200 रुपया प्रति सैकड़ा। ये रहे भैया देखा दुद्धी के बाजार भाव।
1: तो
0: अजय
1: भैया
0: भैया के
1: जवान
0: धन्यवाद।
1: आवश्यकता होए वो के खरीदते हुए हम लोग चल जाए अब घरे,
0: बिल्कुल
1: और फिर भोजन पानी के प्रबंध होए भैया, तो चल जाए,
0: एकदम भैया,
1: तो सब
0: कल
1: पंचन के
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम।
0: भैया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत FM 102.7 पे। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:50 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक में अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल को, फिल्म का नाम था पहेली, गुलजार के बोल थे और संगीत था एमएम करीम का।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था आदेश श्रीवास्तव का। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। कार्यक्रम के अंतर्गत आज भेंटवार्ता का विषय है बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए स्तनपान है जरूरी, और इस विषय पर डॉक्टर अनुपमा पटेल जो कि चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा।
4: विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। माँ और बच्चे के बीच गहरा और घनिष्ठ संपर्क माँ और बच्चे के आपसी संबंधों को और अधिक बढ़ाता है स्तनपान। तो स्तनपान क्यों जरूरी है, क्या लाभ है, कब से कराना चाहिए, बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं ओबरा परियोजना चिकित्सालय की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुपमा पटेल जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: मैम जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम पहला प्रश्न करना चाहेंगे कि स्तनपान क्यों जरूरी है।
5: सबसे जरूरी बात ये है कि स्तनपान आपके शिशु को स्वस्थ रखता है
4: जी।
5: स्तनपान कराने से सभी पोषक तत्व सही मात्रा में शिशु को मिलते हैं। इसके साथ साथ कई तरीके की बीमारियां जैसे मधुमेह, कैंसर, संक्रामक बीमारियां, कब्ज, दस्त, बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि पेट दर्द की समस्या रहती है
4: जी, बहुत ज्यादा है।
5: और बाहर का दूध पीने से बच्चों में एलर्जी आदि की समस्या भी हो जाती है, तो इन सब बीमारियों से बच्चा बचा रहता है
4: जी।
5: और स्तनपान कराने से बच्चे का वजन भी अच्छा बना रहता है
4: जी।
5: साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए स्तनपान बहुत जरूरी है।
4: हाँ भाई, जब इतने सारे रोगों से भी छुटकारा मिलेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी तो फिर स्तनपान तो बहुत ही जरूरी है। और मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि सभी माताओं को नवजात को स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है, एक नवजात शिशु को कब से स्तनपान शुरू कराना चाहिए और फिर कब तक कराना चाहिए।
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सभी माताओं को अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराना बहुत जरूरी है
4: जी।
5: नवजात शिशु को जन्म के बाद से प्रथम बार स्तनपान ही कराना चाहिए। बहुत सारी जगह देखा जाता है कि प्रथम जो दूध रहता है माता का उसे बहा देते हैं, बच्चे को नहीं पिलाते हैं।
4: हाँ।
5: कि वो प्रथम दूध बच्चे के लिए एक टीके के समान होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं।
4: अच्छा, वो जो गाढ़ा पीला दूध
5: जी।
4: अच्छा,
5: कई माताओं में वो गाढ़ा पीला नहीं रहता है, वो पानी की तरह भी आता है, उसका दूध सामान्य दूध के जैसा भी नहीं।
4: अच्छा अच्छा,
5: लेकिन वो बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी रहता है। कई तरीके की बीमारियां जैसे कि ऊपर बताया पहले ही चर्चा के प्रारंभ में
4: जी,
5: उससे वो बचाता है बच्चे को, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है उसको पिलाने से। प्रत्येक माता को अपने नवजात शिशु को जन्म के बाद से ही 2-3 घंटे बाद पहला दूध स्तनपान कराना चाहिए और कम से कम 6 माह तक स्तनपान ही कराना चाहिए। उसके अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं पिलाना है, ना तो आप पानी पिलाइए, ना कुछ दहेज चटाइए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्तनपान कराइए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे कहा जाता है
4: जी,
5: वो 6-6 महीने तक सभी माताओं को अपने नवजात शिशु को कराना चाहिए
4: जी। मतलब 6 माह तक तो जरूरी है और उसके बाद भी अगर कराना चाहे तो मतलब करा सकते
5: जी।
4: तो फिर 6 माह के बाद फिर बच्चे को मतलब कुछ और आहार दिया जा सकता है।
5: हाँ बिल्कुल, आप उससे बच्चे को दलिया है, दाल चावल है और भिन्न भिन्न तरीके की जो सब्जियां हैं उनको उबाल कर पीस कर इस तरीके से बच्चे को थोड़ा थोड़ा सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड सॉलिड इस तरीके से शुरुआत करनी रहती है बच्चे को। साथ साथ में माता का अपना दूध दूध पिलाना है,
4: हाँ।
5: बंद नहीं करना है।
4: जी जी, 6 माह तक जो है वो बस केवल अपना ही दूध पिलाना है, उसके बाद जो है हम कुछ सॉलिड जो है वो शुरू कर सकते हैं।
5: जी।
4: और कहते हैं बच्चों के लिए पहला टीका स्तनपान है, तो आप तो एक डॉक्टर हैं, एक माँ के नाते आप क्या कहना चाहेंगी?
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, प्रथम बार स्तनपान बच्चे के लिए टीके के समान ही है, बहुत सारी घातक बीमारियों से बचाता है, बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, और जो बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां की खांसी जुकाम हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
4: तो
5: उसमें दस्त हो रहा है, कब्ज हो रहा है, इन सब बीमारियों से बहुत ही सुरक्षा मिलती है बच्चे को। साथ ही साथ जो माता का प्रथम दूध होता है, जिसे मैंने पहले ही बताया कि कोलेस्ट्रम कहते हैं,
4: जी,
5: वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
4: अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि कई माताओं को बच्चे की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त दूध नहीं होता, मेरा मतलब है माँ का दूध जैसे कम हो रहा हो, तो बढ़ाने का क्या उपाय है?
5: देखिए, डिलीवरी के बाद कई महिलाओं में, अक्सर ज्यादातर महिलाओं में दूध नहीं होता है, या दूध होता है तो वो पानी की तरह पतला सा होता है।
4: जी जी,
5: तो उसके लिए माताओं को यही सलाह दूंगी कि अपने बच्चे को, नवजात शिशु को अपने स्तनपान जरूर कराएं। जितनी बार अपने बच्चे को आप स्तनपान कराएंगी, इमोशनल कनेक्शन आपका बनेगा।
4: जी।
5: जो स्तनपान कराने से एक हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, वो निकलता है।
4: अच्छा।
5: इस हार्मोन का काम ये होता है कि ये माता के शरीर से दूध का स्त्राव करवाता है।
4: अच्छा।
5: बच्चे को आप जितनी बार स्तनपान कराएंगी, हार्मोन बनेगा और आपका जो दूध है माताओं का, वो बढ़ता जाएगा और वो बच्चे की जरूरत के हिसाब से बनने लगेगा।
4: अच्छा।
5: तो एक तो आपको माताओं को अपने नवजात शिशु को स्तनपान जरूर कराना है,
4: जी,
5: चाहे उन्हें दूध आए या नहीं आए, जितना स्तनपान कराएंगी वो दूध उनका बनना शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में एक संदेश जाना है कि बच्चे को हमारे दूध की जरूरत है। तो वो संदेश जब भी माँ अपने बच्चे को स्तन से लगाएगी, तो संदेश जाएगा, हार्मोन निकलेगा और दूध बनेगा। साथ ही साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखें,
4: हाँ।
5: अच्छी पौष्टिक चीजें खाएं, दूध पिएं, पानी की मात्रा ज्यादा पिएं,
4: अच्छा।
5: और तरल पदार्थों का उपयोग ज्यादा करें। अगर इन सब उपायों के बावजूद भी अगर आपको दूध नहीं बन रहा है, तो चिकित्सक की सलाह लें।
4: अच्छा, मतलब निराश वैसे नहीं होना है और स्तनपान अगर मतलब कराते रहना चाहिए।
5: जी।
4: और ये स्तनपान ना कराने की ज्यादा परेशानी कामकाजी महिलाओं के साथ आती है कि कैसे हम मैनेज करें, डॉक्टर साहब आप बताएं कि ऐसे में क्या करना चाहिए?
5: जी बिल्कुल, कामकाजी महिलाओं को अक्सर ये समस्या रहती है, तो ऐसी महिलाएं जो काम के लिए बाहर जा रही हैं, तो कोशिश करें कि जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने शिशु को दूध पिलाकर ही बाहर निकलें।
4: जी।
5: अगर संभव हो सके तो पंप आते हैं बहुत सारे,
4: जो
5: दूध को निकालकर, स्तन से निकालकर आप बॉटल में रख के बच्चे के लिए रख के जा सकते हैं। माता का दूध जो है आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर, तो वो 8 घंटे तक खराब नहीं होता।
4: अच्छा।
5: अपना दूध फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं रहती है, आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे 8 घंटे तक बच्चा उसे पी सकता है।
4: अच्छा।
5: अगर संभव नहीं है तो इस बीच में जब माता घर पे नहीं है, तब तक फॉर्मूला मिल्क पिलाएं, जो बाहर का दूध रहता है। फिर माता जब भी काम से घर पे लौटे तो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखकर प्रथम काम यही सुनिश्चित करें कि बच्चे को दूध पिलाएं।
4: जी, चलिए, आपने वो अच्छा उपाय बता दिया कि अपना मतलब रूम टेम्परेचर पे भी उसको बॉटल में करके रखा जा सकता है। कई माताओं में ये भय होता है कि स्तनपान कराएंगे तो हमारी फिगर खराब हो जाएगी, ऐसी माताओं को आप क्या कहेंगी?
5: देखिए, गर्भावस्था के 9 महीनों के दौरान यही तैयारी होती है कि माँ गर्भस्थ शिशु को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करा सके, और ये तैयारी नवजात के जन्म से कम 6 माह के लिए बहुत अधिक मात्रा में पर्याप्त रहती है। अगर कोई माता अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती है तो फिगर पे कोई असर नहीं पड़ता है, अभी तो उसके जो गर्भावस्था के दौरान माता ने जो वजन बढ़ा
4: किया हुआ जी,
5: वो,
4: हाँ, जी वो
5: उसमें स्तनपान में काम आता है।
4: अच्छा।
5: इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई माता 3 किलोमीटर चलती है और अपने शिशु को स्तनपान नहीं करा रही है,
4: जी,
5: और दूसरी माता अपने बच्चे को एक बार स्तनपान कराती है, तो दोनों माताएं बराबर मात्रा में ऊर्जा खर्च कर रही हैं।
4: जी।
5: तो इस तरीके से स्तनपान कराने से फिगर बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, बल्कि गर्भावस्था के दौरान जो माताओं का वजन बढ़ा है उसका सदुपयोग भी हो जाता है और बच्चे के लिए भी और माता

0: के लिए, दोनों के लिए बहुत सही रहता है स्तनपान कराना।
1: ये बहुत अच्छे से आपने ये चीज बता दी। और मेरा अंतिम प्रश्न है कि स्तनपान से होने वाले लाभों को लेकर डॉक्टर अनुपमा जी आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगी और ना कराने से नुकसान?
0: जी, स्तनपान कराने से शिशु को होने वाले लाभ की चर्चा हमने शुरुआत में ही की है।
1: जी।
0: माताओं को स्तनपान कराने से कई लाभ हैं, जैसे माताओं को शुगर की बीमारी नहीं होती है, उच्च रक्तचाप, स्तन कैंसर, अंडाशय के कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से बचाव मिलता है। साथ ही अगर माताएं 6 माह के बच्चे को स्तनपान कराती हैं 6 माह तक, तो उन्हें किसी गर्भ निरोधक उपाय की जरूरत भी नहीं रहती है। माताओं में अवसाद की समस्या जो कि डिलीवरी के बाद कॉमन होती है, वो भी स्तनपान कराने से कम होती है।
1: जी।
0: साथ ही साथ स्तनपान कराने से माताओं और बच्चों के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनता है।
1: जी।
0: और अगर स्तनपान माताएं नहीं कराती हैं तो यही सब समस्याएं बढ़ जाती हैं, या समझिए कि बनने की उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है।
1: जी।
0: मेरी सभी माताओं से अपील है कि अपने नवजात शिशु को कम से कम 6 माह तक स्तनपान जरूर कराएं। इससे आपको स्वास्थ्य ही प्राप्त होगा, आपके फिगर पर किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: जी।
0: आपके लिए भी सही रहेगा और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी। तो आज डॉक्टर अनुपमा पटेल जी से स्तनपान पर ढेर सारी बातें हुई, बहुत अच्छी इन्होंने हम लोगों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए स्तनपान है जरूरी, इस विषय पर डॉक्टर अनुपमा पटेल जो कि चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रही थी बबीता पत्रा। और इसी के साथ कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 2023-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा। एनएचएआई ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में जिम्मेदारों पर शुरू की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू। 12 अगस्त तक होगा पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। आज ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की मंशा इस पर चर्चा करने की थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें रुकावट पैदा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी।
1: युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे, लेकिन सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है।
0: उधर विधान परिषद में आज उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-2027 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 समेत 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। अब स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR की तर्ज पर इस क्षेत्र का भी मास्टर प्लान तैयार कर समग्र विकास किया जाएगा। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौशाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
2: हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेसनायर का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहां से DGM हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डिवार भी किया गया। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे, और रेसिडेंट इंजीनियर, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और 2 साल तक लिए उनको भी डिवार किया गया।
0: उन्होंने बताया कि फिलहाल सड़क धंसने वाले स्थान पर यातायात का डायवर्जन कर दिया गया है और वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है। सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। टोल राजस्व की हानि की वसूली निर्माण और देखरेख करने वाली कंपनी से की जाएगी। मेडिकल परामर्श समिति ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू कर दिया है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में

0: सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवनों को एक रूपता के साथ डिजाइन किया जाए, साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। ये समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रही हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ, जौनपुर, हमीरपुर समेत कई अन्य जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों के चलते आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य है। एक रिपोर्ट।
2: हर घर तिरंगा अभियान में 6 से 8 अगस्त तक चलने वाले पहले चरण में स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगे से प्रेरित कलाकृतियों से सजाया जाएगा। 9 से 12 अगस्त के बीच होने वाले दूसरे चरण में प्रत्येक जनपद के तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसके अलावा तिरंगा महोत्सव, तिरंगा मेले का आयोजन भी किया जाएगा। तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच शिक्षण संस्थानों में रैलियां आयोजित कराई जाएंगी। मेरठ, चौरी चौरा, झांसी किला, बिठूर, रेजिडेंसी, बलिया, सुहेलदेव स्मारक पर 9 से 15 अगस्त तक विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। इस अभियान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 2 करोड़ झंडों का निर्माण किया जाएगा। वहीं 1 करोड़ झंडे शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समूहों के माध्यम से तैयार कराए जाएंगे। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित राम दरबार में दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म कर दी है। अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार से रामलला के दर्शन के बाद सीधे प्रथम तल पर स्थित राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अमरोहा में आज पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने थाना नौगांवा सादात क्षेत्र में मोटरसाइकिल से हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ श्रद्धालुओं को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रियों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने समुचित व्यवस्था की है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए साफ सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश समेत अन्य व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अनुपूरक बजट पास, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्ष के अलोकतांत्रिक रवैये के चलते सदन में नहीं हो सकी चर्चा। एनएचएआई ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में जिम्मेदारों पर शुरू की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू। 12 अगस्त तक होगा पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है कानून की बात। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सतर्कता, इस विषय पर श्री अरविंद पांडे से अतिश श्रीवास्तव की भेंट वार्ता।
7: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है, मैं हूँ अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि महिला हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो लेकिन हमारे समाज में ऐसी बुरी गतिविधियां हो रही जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते, तो इस पर बृहद बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है अरविंद कुमार पांडे जी। आप अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं, आप सदस्य सचिव विधि आयोग के रह चुके। पांडे जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
8: धन्यवाद।
7: आप पांडे जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कानून की नजर में महिला शब्द का क्या मतलब?
8: महिला का अर्थ ये बताया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के उपधारा 35 में महिला को परिभाषित किया गया है। और जैसा कि एक नोशन होता है हम सभी के दिमाग में, महिला का मतलब कुछ एजेड हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन कानून की दृष्टि में फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, ऐसी फीमेल बच्ची जो किसी भी उम्र की हो,
7: जस्ट बॉर्न भी,
8: उसको कानून की दृष्टि में उसे महिला कहते हैं जी। और महिलाओं से संबंधित अपराधों की बात होगी इसलिए मुझे महिला समझना आवश्यक है कि जस्ट बॉर्न से लेकर के किसी भी एज की वो महिला ही कहलाती है। यद्यपि चाइल्ड भी डिस्क्राइब्ड है, लेकिन चाइल्ड न्यूट्रल जेंडर होता है, उसमें बच्चा फीमेल और मेल दोनों शामिल हैं, इसलिए उसको चाइल्ड कहते हैं।
7: अपराधों की क्या श्रेणी तय की गई है, क्या मानता है कानून?
8: कानून में देखिए, महिलाओं से संबंधित अपराध, जैसा हमने आपको बताया, महिलाओं में फीमेल बच्चियां भी शामिल हो गई, महिला तो है ही, महिला में ही निहित है। इसमें भारतीय न्याय संहिता जो कि मुख्य दंडों के विषय में भारत का कानून है, भारतीय न्याय संहिता 2023
7: जी,
8: जो कि 1 जुलाई सन 2024 से लागू है। इसके पहले हम सभी को जानकारी है कि इंडियन पेनल कोड
7: IPC
8: हमारे यहाँ लागू थी, जिसे कि कम्प्लीटली एबॉलिश करके भारतीय न्याय संहिता उसके स्थान पर लग गई, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू है
7: जी।
8: इसमें कुछ जो महिलाओं से संबंधित मुख्य रूप से अपराध हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न, स्त्री पर आक्रमण, वायरिज्म कहते हैं कि महिला किसी ऐसे कार्य के लिए बैठी प्राइवेट एक्ट कर रही है, आप उसको वॉच करते हैं, उसकी फोटोज को कैप्चर करते हैं, खींचते हैं, उसको कहते हैं। फिर आता है पीछा करना, स्टॉकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। डाउरी डेथ बहुत ही कॉमन है, दहेज मृत्यु। फिर क्रूरता, क्रुएलिटी, जैसा आप जानते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्रुएलिटी बताया गया कि किसे कहते हैं, क्रूरता महिलाओं के संबंध में, बाल अपराध। इसके अलावा आपको घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके पश्चात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि एक बहुत मशहूर केस हुआ था राजस्थान का, विशाखा केस
7: जी,
8: विशाखा केस के नाम से मशहूर था। उसके बाद बनाया गया कि कार्यस्थल पर, जहां वर्किंग प्लेस होता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, ये देखा गया है कि महिलाओं जिनकी भागीदारी, जिसको हम आधी आबादी के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो अब वो वर्किंग होने लगी, शिक्षित होने लगी, कार्य भी करती हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, अन्य प्रकार के कार्य, तो कार्यस्थल पे उनके साथ में इस तरीके का उत्पीड़न ना किया जाए, इसके संबंध में एक अधिनियम बनाया गया 2013 में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, जिसको पॉश नॉम से जानते हैं कॉमनली जी। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ये है, यानी बाल विवाह को रोकना है, बाल विवाह सही नहीं है, यद्यपि आपको बता दूं कि हिंदू में बाल विवाह आवश्यक शर्तों में आता है कि 21 का लड़का और 18 की लड़की होना चाहिए।

0: लेकिन अगर ये नहीं होता है, मान लिया जाए शादी कर ही दी गई है, तो विवाह आपका वायडेबल की श्रेणी में आता है। वायड, वायडेबल और वैलिड, तीन कैटेगरीज होती हैं। वैलिड का मतलब होता है सही है, कंप्लीटली ठीक है। वायड का मतलब शून्य है, एकदम नहीं ठीक है, जीरो है। बीच का है वायडेबल, जब बच्ची 18 की हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, तो उसको एक ऑप्शन हो सकता है कि वो अपने शादी को शून्य डिक्लेयर करा सके आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी।
1: तो इस पे
0: तो
1: जो महिला है या कन्या है
0: जी
1: उस पर डिपेंड करता है कि वो अगर चाहती है
0: हाँ,
1: तो।
0: और नहीं अगर चाहती है तो वो मैरिज वैलिड ही रहेगी। वायडेबल में एक ऑप्शन, सिर्फ विकल्प मिलता है किसी को भी कि वो चाहे तो अपने शादी को शून्य यानी वैड उद्घोषित करवा सकता है सक्षम न्यायालय के द्वारा। ठीक
1: अच्छा
0: है,
1: जी।
0: तो ये एक, लेकिन ये तो हो गया शादी होने के बाद की बात। लेकिन शादी रोक दी जाए, इसके लिए एक अधिनियम बना दिया गया 2006 में कि अगर किसी भी समाज में आ किसी को ये जानकारी हो गई कि बाल विवाह कराया जा रहा है
1: हाँ,
0: तो उसे रोका जा सकता है। प्रतिषेध अधिनियम है
1: तो
0: ये
1: इसकी सूचना अड़ोस पड़ोस के लोग
0: हाँ,
1: दे
0: कोई
1: सकते
0: भी
1: हैं।
0: दे सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कानून का उल्लंघन हो
1: हो
0: रहा
1: रहा
0: है,
1: है।
0: इसको रोक दिया जाए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015।
1: क्या कहता है?
0: जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बाल अपराधी जो होते हैं, बाल अपचारी होते हैं, अगर उनके साथ में कोई भी अपराध किया जाता है या वो खुद करते हैं तो उसको हम लोग जेल में सीधे ना रख करके उनको सुधार गृह, बाल सुधार गृह, बाल अपराधी को बाल अपचारी कहा जाता है, उनको
1: हाँ
0: अभियुक्त नहीं कहा जाता मेजर की तरह से।
1: जी।
0: समाज में हमारा ये धर्म बनता है कि हम बच्चों को इससे रोकथाम भी करें और यदि कभी गलती हो गई, कोई अपराध हो भी गया तो उसे पूरा सुधार करके मेन स्ट्रीम में ले आया जाए।
1: उनको
0: इसीलिए
1: सुधरने का मौका दिया जाए,
0: सुधरने का मौका तो सभी को देना है, बच्चों के साथ में बच्चे हमारे देश का
1: भविष्य
0: भविष्य हैं।
1: जी।
0: और सोशल इंजीनियरिंग ये कहती है, सामाजिक संरचना, कि बच्चे जितना हमारे सुदृढ़ अच्छे होंगे वो आगे समाज और मजबूत होगा, और मजबूत समाज हमें सभी को चाहिए। इसलिए ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है।
1: तो पांडे जी, अब हम ये जानना चाहेंगे जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, जिस उनके बचाव के लिए या ऐसे ऐसे जो स्थल हैं, जो कार्य करने की जगहें हैं, उसमें क्या कहता है हमारा कानून, कैसे बचाव किया जाए?
0: हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें बचाव कहते हैं कि कुछ चीज का बचाव बहुत ही कारगर होता है, अपराध उनके साथ हो ही ना, इसका भी रास्ता देखना है
1: हाँ
0: हमें।
1: बिल्कुल जी।
0: जी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगर कुछ इसके सुरक्षा के, महिलाओं की सुरक्षा से कि कुछ उपाय, प्रभावी उपाय के संबंध में अगर चर्चा करेंगे तो मेरा जो मानना है कि सबसे पहला है परिवार और समाज स्तर पे जागरूकता फैलानी चाहिए।
1: बहुत जरूरी है।
0: जी, बहुत जरूरी है। बच्चों और महिलाओं को, जैसे आपने आजकल बच्चों को स्कूलों में सिखाया भी जाता है गुड टच बैड
1: बैड
0: टच,
1: टच, बिल्कुल।
0: जी, अच्छे और बुरे स्पर्श, है ना, निजी सुरक्षा है। एक चीज हम कहना चाहेंगे आपसे, हम अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं कि अगर किसी महिला या बच्चे के साथ कोई भी शंका पैदा हो तो बिना डर भय के वो अपनी समस्या बता सके पेरेंट्स को, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: पहली पाठशाला हमारी परिवार होती, घर होता है। और दूसरा ये है कि उनको ना कहने की अधिकार को समझाया जाए कि वो
1: हाँ।
0: ना बोल सके, अगर किसी ने उनसे कोई भी
1: बैड इंटेंशन से
0: अनवांटेड
1: देखना।
0: अनवांटेड डिमांड कर दी,
1: हाँ
0: तो अनवेलकमिंग उसके साथ में कोई वो कर दी, तो उसे सीधे वो ना कह दे, ऐसा राइट उसको, ऐसे प्रवृत्ति फैलानी चाहिए। सर, हमारे समाज की एक बुराई कह लीजिए कि हम लोग जो पीड़िता होती है, जो किसी अपराध की शिकार हो गई है, उसको हम लोग दोषी ठहराने लगते हैं।
1: बिल्कुल
0: इस
1: जी।
0: प्रवृत्ति को हमें रोकना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां
1: हाँ,
0: बच्चा या महिला बिना डर के
1: खुल के
0: अपनी
1: बात कह
0: समस्या बता
1: सके।
0: सके। जी,
1: बिल्कुल जी।
0: ये बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, शिक्षा और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, कानून की जानकारी और त्वरित शिकायत की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
1: ये घर
0: तो
1: में सबको मालूम हो, बच्चों को भी
0: हाँ,
1: मालूम हो।
0: बच्चों को मालूम है, उसको हम लोग टाइम टू टाइम, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा वो बताना चाहूँ, व्यवहारिक ज्ञान, कि अगर माता पिता या घर के अन्य सदस्य एक साथ बैठ के भोजन करें, यदि दिन का समय का नहीं है तो डिनर ही साथ करें, और उस पर ये चीजों की थोड़ी सी चर्चा की जाए,
1: सब लोग साथ बैठना
0: साथ
1: जरूरी है।
0: बैठें, उससे कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, तो उसमें इस तरीके की चर्चा आवश्यक है। आपको महिला थाना तो देखिए बहुत से जिलों में खुल भी गया है, लेकिन अभी बाल मित्रवत व्यवस्था नहीं हुई है बच्चों के संबंध में शिकायत करने

0: वालों का नाम की गोपनीयता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, तो ये आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर है सीसीटीवी है, पर्याप्त लाइट होनी चाहिए, जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा होनी चाहिए, और सुनसान क्षेत्रों में नियमित निगरानी और एक सुरक्षा त्वरित सहायता व्यवस्था भी होनी चाहिए।
1: जी
0: साइबर सुरक्षा के विषय में भी इनको हम लोग जानकारी दें, जैसे
1: आजकल
0: आजकल
1: साइबर फैला हुआ बहुत ज्यादा।
0: साइबर बहुत फैला हुआ है, महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, फेक प्रोफाइल, ब्लैकमेलिंग, अश्लील सामग्री भेजने जैसे अपराधों से बचाव की जानकारी दी जाए। सोशल मीडिया पे निजी जानकारी, लोकेशन, फोटो, पासवर्ड साझा करने से बचना चाहिए। ये सब हम जब अवेयर करेंगे तो हमारी महिलाएं वो सभी सुरक्षित रह सकती हैं। हाँ, बच्चों के जो मोबाइल होते हैं, बच्चे को हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे इंक्लूड्स फीमेल ऑल्सो, अभी
1: बिल्कुल
0: हमने
1: बिल्कुल
0: बताया महिला का अर्थ क्या
1: जी
0: होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो इनको इंटरनेट के उपयोग पे क्या ये काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। इसके अलावा अगर पॉइंट देखा जाए तो जो स्कूल या संस्थान जहां महिलाएं जाती हैं उस वहां पे भी इस तरीके की एक शिकायत समिति होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा बनी भी है, कानून ने भी बनाया है कि कोई असहज महसूस करे, उसके साथ कोई भी इलीगल डिमांड्स हो, वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सके जिसके कि उसकी सुरक्षा और बढ़ सके। पुलिस और न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। अभी आपको हम बता दें जानकारी के लिए, हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिला विधिक सहायता केंद्र खुला हुआ है।
1: डीएलएसएस
0: ये खुला हुआ है जिसे उनको कई प्रकार की मदद भी दी जाती है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत से एसिड अटैक्स के मामले बढ़ रहे हैं।
1: तो क्या इसमें भी कोई रेगुलेशंस हैं कि एसिड को कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, कहाँ रखा जा सकता है?
0: जी, एसिड अटैक के विषय में पहले तो कहेंगे कि ये एक नया अपराध अपने बीएनएस में तो रेगुलर कर दिया गया है, आईपीसी में भी ऐड कर दिया गया था, और इसके संबंध ये चिंता का विषय है। महिलाओं के ऊपर अक्सर इस तरीके के अपराध हो रहे हैं उनके विरुद्ध। एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के केस है 2014 का, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसिड की बिक्री और नियमन के विषय में गाइडलाइंस इश्यू की हैं और कहा है कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिया जाए। अब ये विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है, और आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली ये तुरंत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डीएलएसए के द्वारा ये तत्काल प्रदान की जाती है कि जिस महिला के जो एसिड अटैक की पीड़िता है उसको तत्काल जो चिकित्सा की सुविधा हो, ये उसके संबंध में तुरंत उसे क्षतिपूर्ति की रकम रिलीज कर दी जाती है। कोर्ट भी इसमें जो फाइन लगाएगी, फाइन की रकम पूरी की पूरी पीड़िता को दी जाती है, और भी अगर रिकमेंड करेगी तो डीएलएसए के मार्फत दी जाएगी। तो ये गाइडलाइन दिया गया लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसकी जानकारी श्रोताओं के लिए हमारे बहुत आवश्यक है। उनको ये मालूम होना चाहिए कैसे हम करें। हर एक जिले में पीएलवीज होते हैं, पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, जो डीएलएसए के अंतर्गत कार्य करते हैं, आप उन्हें संपर्क करें, या सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सचिव जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रहते हैं, आप उन्हें संपर्क करके ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: हमारे श्रोताओं को, खासकर महिलाओं को, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं कि वो कैसे अपनी बचाव कर सकते हैं, उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, कोई पीड़िता है तो उसको कैसे सही जगह पहुंचा सकते हैं। तो आप स्टूडियो आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
2: महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सतर्कता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे श्री अरविंद पांडे से अतिश श्रीवास्तव की भेंटवार्ता। इसी के साथ ही आज का कानून की बात कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 4.6 मीटर,
3: एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। हम साथ साथ हैं। इस फिल्म में आइए सुनते हैं हरिहरन, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन और उदित नारायण को।
4: JKLM NOPQRSTUVWX YZ I love you।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: दिल है तुम्हारा, आइए इस फिल्म में सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण को। समीर के बोल हैं और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

चीनी कम इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत था इलैयाराजा का। और इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अब आप सर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने

निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि इस सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉक्टर एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तन्खा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया।
करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए।

0: जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: बंदिश, आइए इस फिल्म में सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बंदिश। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 8:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा।
1: विधानमंडल की समीक्षा, सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
2: इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी संक्षिप्त रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मॉनसून सत्र 4 दिन के बजाय 3 दिन में ही समाप्त हो गया। इसी शोर शराबे और हंगामे के बीच जहां विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं विपक्ष ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सरकार को घेरा। सपा सदस्यों द्वारा मंगलवार को नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान किए गए शोर शराबे और हंगामे को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने असंसदीय बताते हुए क्षोभ व्यक्त किया। बावजूद इसके चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर सपा के सदस्य आज फिर वेल में आकर शोर शराबा और हंगामा करने लगे। सपा सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 1.5 घंटे तक बाधित रही। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य फिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही सदन में जहां सारे विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। आज ही सदन में संबल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। इससे पूर्व सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शोर शराबे और कल की घटना पर क्षोभ जताते हुए कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वो संवैधानिक संस्था के लिए उचित नहीं था। हमें यह तय करना होगा कि हम अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष, विपक्ष, संवाद, सहमति और असहमति हो सकती है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि संविधान की गरिमा और उसकी महत्ता के अनुकूल सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि वाद विवाद, सहमति और असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होगी। संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने कहा कि कल जो सदन में हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि यहां आप सब लोग पार्टी से ऊपर उठकर विचार रखें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में क्या परंपराएं छोड़ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों को कितना सार्थक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मना करने के बाद भी सदस्यों ने मीडिया और सोशल मीडिया को यहाँ के वीडियो और फोटोग्राफ्स दिए हैं, उसे प्रसारित किया गया है। ये आपत्तिजनक है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया था। इस दौरान सपा के विधायक इंजीनियर सचिन यादव मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद उनका निलंबन किया गया था। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उनके दल के सदस्यों ने 2 घंटे तक अनुनय विनय किया, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो सदस्यों को वेल में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में 311 में स्पष्ट है कि सदन के सारे काम रोककर किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कराई जा सकती है। यदि कल इस मुद्दे पर चर्चा हो जाती तो ये स्थिति उत्पन्न न होती। इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सदन में कल जो भी हुआ वो लोकतंत्र का हिस्सा था। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा सपा सदस्यों के आचरण पर व्यक्त किए गए क्षोभ पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में आपने सदन का संचालन सुचारू रूप से किया है। उन्होंने कहा कि इसमें 2 राय नहीं है कि पिछले 4.5 सालों में यूपी विधानसभा का कार्य चालन देश की बाकी विधानसभाओं के लिए नजीर बना।
1: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
2: विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में शुरू हुई। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण छात्रों के आंदोलन पर सरकार की नीति का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर आशुतोष सिन्हा ने कहा कि यहां लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर अपनी वर्षों की जमा पूंजी खर्च करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक होकर परीक्षा रद्द हो जाती तो युवाओं का विश्वास टूट जाता है। पिछले 9 वर्षों में 20 से अधिक परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द हुई। लाल बिहारी यादव ने कहा कि पेपर लीक गंभीर विषय है, छात्र आंदोलित हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सपा सदस्य शिक्षा और परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा में सुधार और पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोकें, इस पर कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये देश के 30 करोड़ नौजवानों से जुड़ा विषय है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश में कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, ये मुद्दा नया नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है, सपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कई बार टोकाटोकी और विरोध के बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें शांत रहने का निर्देश दिया, लेकिन सपा सदस्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर गए। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालय, सरकारी प्राइमरी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को छात्रों की अपार आईडी बनाने में होने वाली कठिनाइयों का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राह्यता पर राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि प्रदेश में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि के आवंटन की व्यापक जांच कराई जाए। जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन कर भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर पट्टे दिए गए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर विभागीय एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऐसे सभी अवैध पट्टों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए तथा सार्वजनिक भूमि को पुनः राजस्व अभिलेखों में मूल स्वरूप में दर्ज कर उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में चारागाह, नदी, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध आवंटनों की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की। भोजनावकाश के बाद सभापति सलिल बिश्नोई के सभापतित्व में बैठक हुई। कार्यसूची की मदों को निपटाया गया। याचिकाओं को याचिका समिति को संदर्भित किया गया। प्रमुख सचिव विधान परिषद ने 12 विधेयकों को सदन की मेज पर रखा, जो ध्वनिमत से पारित हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026 भी पारित हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
3: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन
4: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का उपरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: आकाशवाणी ओपरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए फिर से सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज।

0: शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
4: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
5: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला। पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
1: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
6: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
7: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
1: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
8: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
9: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 पर बंद हुआ।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
11: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India, since 2019, the Supreme Court recorded institution of 75,410 fresh matters last year, against a disposal of more than 65,000 cases. The volume of litigation in the Supreme Court has constantly been on the rise due to a persistent gap between institution and final disposal of cases in the court. The increase in the number of judges in the Supreme Court is expected to expedite the disposal of cases and ensure timely justice to the people. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
10: After completing the business, the deputy chairman adjourned the upper house for the day. Earlier in the day, the upper house witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid, and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the government keeps itself informed of global developments and evolving international regulatory approaches relating to online safety, including measures adopted by different jurisdictions for protection of children in the digital environment. He said the Digital Personal Data Protection Act 2023, DPDP Act, has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data. The DPDP Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. It was made clear to Meta that they are not covered under intermediary definition and they select who receives the content. They apologized and regretted the mistake. In Jharkhand, the students' protest against the alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations being held at Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi is intensifying with each passing day. The agitating students have announced plans to lay siege to the Jharkhand Assembly during the upcoming monsoon session to press their demands. The BJP today hit out at senior Congress leader Rahul Gandhi over his silence on the ongoing protests in Jharkhand against alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Sambit Patra alleged that Mr. Gandhi has not visited Jharkhand because the Congress is part of the ruling alliance in the state. He also criticized the Congress leader for bringing innocent children to his press conference for the party's own political purposes. The BJP spokesperson said children are the future of the country and should not be drawn into politics for any issue. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. He said women, marginalized communities or those who were denied their basic constitutional rights for decades have been empowered with the full application of the constitution. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
12: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir has accelerated. Both heritage and development have received a boost. Employment opportunities have increased and people have witnessed unprecedented infrastructure growth. The people there are happy.
10: India today asked Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istehsal. He said the world is not fooled by these orchestrated spectacles. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have always been and will always remain an integral and inalienable part of India. He said the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are an internal matter of India and Pakistan has no locus standi to comment on these matters. Punjab police has uncovered a sinister plan of cross-border terror module to target Delhi's Jantar Mantar during a recent student protest. The persons involved in two ISI-backed cross-border terror modules busted by Amritsar police revealed during investigation that they had travelled through Delhi with petrol bombs to carry out an attack at the protest site. However, they abandoned the plan after finding heavy security deployment in the area. Amritsar police said four of the nine arrested accused are juveniles and had been trained by ISI handlers. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said India's pilot training ecosystem is witnessing a significant growth. Mr. Naidu said the number of commercial pilot licenses issued increased from over 1,300 in 2024 to more than 1,600 last year. The minister said this while distributing letters of intent to 11 flying training organization FTOs in New Delhi today.
13: We have given letter of intent for 11 FTOs in 7 airports to start up FTOs for our students who are interested in becoming pilots. If you look at the way civil aviation is growing in the country, we are going to have 500 more aircrafts in the next 5 years. So at any given point of time, this requirement of new pilots shouldn't become a bottleneck for us. So we from the ministry are providing all the support that is required to the industry.
10: The government today said it has strengthened the legal and institutional framework to deal with online piracy of cinematograph films, including unauthorized dissemination of films through intermediaries such as Telegram. Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan stated this in a written reply in the Lok Sabha today. In reply to another query, Dr. L. Murugan informed the lower house about the journalist welfare scheme being implemented by the government to provide one-time ex gratia relief on urgent basis to journalists and media personnel or to their families in the event of extreme hardship arising out of death, permanent disability, serious ailments and accident-related hospitalization. The Monetary Policy Committee, MPC of the Reserve Bank of India, RBI, has decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. Making the announcement today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection marginally to 6.7% from 6.6% and reduced the inflation forecast to 5% from 5.1% in the current financial year. Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. We have a report.
14: The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. Meanwhile, in the Forex market today, the rupee appreciated by 25 paise to end at 95 rupees and 13 paise against the US dollar. With Intikhab's report, Gaurav Dhawan Lal for Akashwani News.
10: In sports, India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan with seven players advancing to the second round of women's singles while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Karb, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita Ramraj, Ashmita Chaliha, Isharani Barua and Shreyansi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. However, in the men's singles, former world number one Kidambi Srikanth, Mithun Manjunath, Kiran George, Ronak Chauhan, Sanit Dayanand and Tarun Manepalli all suffered first round defeats. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharbamang, seven Indians to enter second round of women's singles. That is all in the news at 9. Good night.
15: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। शब्द रचना शहरयार के हैं और संगीत है खय्याम का। आइए उमराव जान इस फिल्म में सुनते हैं आशा भोसले को।

0: वो भी ऐप से। फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। लव इन टोक्यो इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है कारवां। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आरटी बर्मन का संगीत।

कारवां इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत था आर डी बर्मन का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओपरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे चर्चा का विषय है।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझकर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एसओपी बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एसओपी कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
4: जी नमस्कार।
2: शरद जी आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी

0: ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देकर उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही, अब जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल, जो कि फ्रॉड करना चाहता है, उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
1: जी हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है, म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलीजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेन कर रहे हैं कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे, जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
0: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पे डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग

0: इस कार्य में लगे हुए हैं वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसीलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो एसओपी जारी किया है उस एसओपी में क्या क्या चीज है, आप देखिए अगर एसओपी को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, एफआईआर भी करेंगे और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरा इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, यूपीआई से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है जी हमें क्या पता, वो तो आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा देखिए मामला कहाँ जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज ये भी कहा गया आनंद के, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दे, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए होता क्या है जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगा, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड है वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है, कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है, का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी, वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें 1930 है, आप फोन करेंगे

0: आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं। और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डिवेलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कलेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए, उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी किसी आम आदमी को, यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, जिसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, अब मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक, तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी है। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है, मतलब जो फ्रॉड मान लीजिए मैं मानता हूँ 1 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है, कुल मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12-12 हजार, 12.5 हजार, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है, उसमें से मात्र 5-10 हजार रुपए, 5%, 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करें, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसीज अभी भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई

0: कोई एजेंसी नहीं है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़ी अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, ई केवाईसी भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डेलिजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डेलिजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहाँ होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती है, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा, सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
0: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलीजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते

0: सकते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से AI टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहाँ पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को, ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए, कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे, कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये RBI को SOP बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाए, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग्स टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है, तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहे कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती, तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहे।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है, और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा, उन्हें

0: फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती याद रखिए। दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

हम आकाशवाणी के उबर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। शब्द रचना समीर के हैं और संगीत है आनंद मिलिंद का। तो चलिए आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं फिल्म दिल से।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को, फिल्म का नाम था दिल। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम है दूध का कर्ज। आनंद बख्शी के बोल और संगीत अनु मलिक।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था सिलसिला, जावेद अख्तर के बोल थे और संगीत था शिवहरि का। आकाशवाणी ओवरस इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम रसधारा।

कभी कभी। आइए इस फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत यह खयाम ने।

कभी कभी इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। इस गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया था खय्याम ने। और इसी के साथ कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई पर बजाया राग कलावती।

अभी आप उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई पर बजाया राग कलावती सुन रहे थे और इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही बोलो में यानी कि रात्रि के 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।